एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 की आश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 14 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले

मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञा नंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार

6:05 हुए हैं। चिंतन। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे पर नहीं बल्कि अपने ही मन पर होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद ऐसे भाव हैं जो हम मनुष्यों को बाहर से नहीं भीतर से कमजोर करते हैं। जब इच्छा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब लोभ जन्म लेता है। इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध आता है और जब हम अपने मैं को सबसे बड़ा मानने लगते हैं तो अहंकार रास्ता रोक लेता है। इन सबसे बचने का सबसे सरल मार्ग है संयम, संतोष, आत्मचिंतन और अध्यात्म। आध्यात्मिकता इनमें सर्वोपरि है, परंतु आध्यात्मिक होने का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं बल्कि अपने भीतर भी झांकना है। जहां गलत भाव दिखाई दे उसे वहीं रोकने का प्रयास करना है। अच्छे विचार, संयम, सेवा, सत्य और सत्कर्मों को जीवन का आधार बनाकर ही हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। चिंतन के बाद आइए शुरुआत करें भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की, विघ्नहर्ता गणपति जी की इस भजन के साथ।

शिव को पाने के लिए बहुत कुछ साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं, बस मन से छल कपट उतार दीजिए और हृदय में सच्ची श्रद्धा रखिए। यही शिवधाम तक हमारी सच्ची यात्रा है।

माता रानी की महिमा अपरंपार है, जिनकी आराधना देवगण भी श्रद्धा से करते हैं। ऐसी जगदम्बा के चरणों में शीश झुकाना अपने आप में सौभाग्य की बात है। आइए माँ का गुणगान करें।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और अब लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि

अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान से भक्तिमय रचना मानस गान भाग 219। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 6:50 हुए हैं। आप प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभप्रयाग प्रसारित करेंगे 7:40 पर। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर लुत्फाइएगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गाने सुहाने का। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से सुने जा सकते हैं 9:50 पर। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 10:00। पहाड़ों के सुर 10:30 पर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें आप लुत्फ उठाएंगे लोक गीतों का। 11:00 आकाशवाणी शिमला से एक बार फिर प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। 11:05 पर आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इसका प्रसारण समय रहेगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 का समय रहता है कार्यक्रम सैनिकों के लिए कई प्रसारण का। बहनें अपना साप्ताहिक कार्यक्रम मिंजरा सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिन्हें हम आकाशवाणी मुंबई से रिले करेंगे। इसी दौरान दोपहर 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 3:10 से एक बार फिर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई, जहां से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे और शाम 5:00 तक आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुने जा सकते हैं, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और जिनमें 5:00 हिंदी में समाचार रहेंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार। फिल्मों से भजन 5:10 पर सुनवाए जाएंगे। 5:25 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच। आज कार्यक्रम में रोजगार समाचारों के साथ साथ बात होगी विज्ञान जगत की। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन रिले किया जाएगा। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। किसान बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजा गराइंदियां हम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी शिमला से ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन आप सुन पाएंगे शाम 7:45 पर। 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा दिल्ली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 और इसके तुरंत बाद मिले जुले गीतों का आनंद लीजिएगा, कार्यक्रम होगा सबरस। देशभक्ति गीत 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 न्यूज हिट 9 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज अभिनेता चंकी पांडे द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत सुनवाए जाएंगे। 9:30 पर गजलों का आनंद लीजिएगा, कार्यक्रम होगा रंगे गजल। 10:00 लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। 10:30 पर लुत्फ उठाइएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीतकार सभा के अंत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। भारतेन रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबंध संबद्धाधिनियमस्य विषये स्वकीयाः हितचिन्ताः पुनः स्पष्टतया प्रतिपादिताः। विदेशमंत्री डॉ. एस. जयशंकरः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः अधिवेशनावसरे ह्यः सायं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य विदेश मंत्रिणं मार्को रूबियो इत्येतं मिलितवान् तथा एतम् अभिनियमं प्रति भारतस्य चिन्ताः तस्य समक्षं प्रस्तुतवान्। उभौ नेतारौ भारत संयुक्त राज्य अमेरिकया देशयोः द्विपक्षीय संबंधानां युक्रेनस्य च परिस्थितीनां विषये अपि चर्चां कृतवन्तौ। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः

0: ट्रम्पः गतसप्ताहे रूस ईरानयोः विरुद्धं प्रतिबन्ध सम्बद्धाधिनियमं विधिरूपेण प्रवर्तितवान्। अस्य अधिनियमस्य अन्तर्गतं रूसदेशात् तैलं वातेन्धनं च क्रयमाणेभ्यः देशेभ्यः अधिकतमं 100% पर्यन्तं शुल्कम् आरोपयितुं प्रावधानमस्ति। अस्य प्रत्युत्तरे नवदिल्ल्या उक्तं यत् भारतं स्वकीयानाम् आर्थिकहितानां संरक्षणाय तथा राष्ट्रस्य ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुं सर्वान् आवश्यकान् उपायान् करिष्यति। डॉ. जयशंकरः रविवासरे न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान् तथा संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः 81वें अधिवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन्नस्ति। जयशंकरेण सह मेलनानन्तरं रूबियो उक्तवान् यत् उभौ देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढीकुरुतः तथा प्रमुखेषु क्षेत्रीय प्राथमिकता विषयेषु आगामिषु च बहुपक्षीय प्रयासेषु समन्वयेन कार्यं कुरुतः। निर्वाचनायोगेन उक्तं यत् मतदातृसूच्याः पुनरीक्षणं समेत्य सर्वे निर्णयाः सर्वसम्मत्या गृहीताः। आयोगेन संसूचितं यत् तेन अनेके निर्णयाः गृहीताः, प्रायः 40 नूतनाः उपक्रमाः प्रारब्धाः तथा विगतेषु मासेषु सम्पूर्णदेशे विशेषगहन पुनरीक्षणं समेत्य अनेक नैर्वाचनिक परिष्काराः कृताः। आयोगेन बलं प्रदत्तं यत् मतभेदाः कस्यापि संस्थायाः विचारविमर्शस्य सामान्यः भागः अस्ति। अन्तिम निर्णयग्रहणात् पूर्वमेव एषः निर्णयग्रहणप्रक्रियायाः अपि अभिन्नः भागः भवति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः टैक्सी इति भाटक चालकेभ्यः कृषकेभ्यश्च साहाय्यं प्रदातुम् उद्दिष्टां भारत टैक्सी योजनां तथा मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनां च प्रारब्धवान्। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं द्विचक्रिका यानानां भाटकयानानां तथा त्रिचक्रिका यानानां चालकाः कस्यापि शुल्कस्य देयकं विना स्वनाम पंजीकर्तुं शक्नुवन्ति। तेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां पर्यन्तं सामाजिक सुरक्षा कवचमपि प्रदास्यते। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजनायाः अन्तर्गतं उत्तरप्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंकेन कृषकेभ्यः प्रदीयमानेषु ऋणेषु वृद्धिमूल्यं 11%-6% षट्प्रतिशतं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। वित्त मंत्रालयेन संसूचितं यत् सर्वे सार्वजनिक क्षेत्रीयाः बैंकाः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकाश्च अस्मिन् मासे रविवासरे 27वें दिनांके उद्घाटिताः भविष्यन्ति। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलं जापान देशस्य आईची नगरे उपांत्य चक्रे चीन दलेन 1-3 इत्यंकांतरालेन पराजितम्। अनेन पराजयेन भारतेन कांस्य पदकं प्राप्तं। सहैव भारतस्य पदक संख्या 12 जाता, यस्मिन् 1 सुवर्णं 5 रजत पदकानि तथा 6 कांस्य पदकानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.
3: The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Vadnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. Delhi government has approved the Durga

0: सुबह सुहानी।
1: स्वागत सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुबह सुहानी में। सुबह सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर है हम इस सुहानी सुहानी से सुबह में। मोबाइल पर स्क्रीन की आज जो स्क्रीन है उस पर तारीख बदल चुकी है, कैलेंडर का पन्ना जो है वो भी बदल चुका है। अब बारी है श्रोताओं के मूड को बदलने की, और मूड बदलता है अच्छी सोच से, अच्छी बातों से।

स्पीड चाहे जितनी हो आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, चलते रहना जरूरी है। और हम भी कार्यक्रम में अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और बाकी की बातें करेंगे इस गीत के बाद।

जी, ये खूबसूरत सा गीत श्रोताओं ने सुना, और इस गीत की पहली लाइन हम एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि हम चाहते हैं हमारी सुबह भी हमारे श्रोताओं के साथ हो, और जब हम शाम को अलविदा, रात को अलविदा कहते हैं, तो श्रोताओं का साथ यूं ही हमेशा हमारे साथ बना रहे। और अब कार्यक्रम सुबह सुहानी में आगे बढ़ते हैं। आज है 24 सितंबर, बात करते हैं आज के इतिहास की। श्रोताओं, इतिहास की खूबसूरती यही है कि एक तारीख अपने भीतर कई दौर समेटे रहती है। कहीं कोई फैसला आने वाले सालों की दिशा बदल देता है, कहीं विज्ञान असंभव लगने वाली दूरी तय करता है, और कहीं देश की उपलब्धि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। 24 सितंबर भी ऐसी ही यादगार घटनाओं की तारीख है। तो आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, और सबसे पहले बात

करते हैं आज यानी 24 सितंबर की मुख्य घटनाओं की। सबसे पहले लौटते हैं साल 1932 में, जब हुआ एक ऐतिहासिक फैसला। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसी दौर में सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण था। आज ही के दिन यानी 24 सितंबर के दिन इस साल में यानी साल 1932 को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना एक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान तय हुए और अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था के साथ आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। और अब साल 1932 के वक्त को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे दौर में जब दुनिया परमाणु हथियारों की दौड़ के बीच परीक्षणों पर रोक की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही थी। अब तारीख वही यानी 24 सितंबर, लेकिन साल बदल चुका है। साल है 1996। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में एक दिन व्यापक परमाणु परीक्षण संधि यानी CTBT हस्ताक्षर के लिए खोली गई। इसका उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाना था। कई देशों ने उसी दिन इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इसे परमाणु परीक्षणों को रोकने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। भारत की बात करें तो उस समय भारत ने संधि मसौदे पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी और इसे परमाणु निरस्त्रीकरण के व्यापक संदर्भ में देखा था। 24 सितंबर के इतिहास का अगला पड़ाव हमें भारत के एक दुखद अध्याय तक ले जाता है। श्रोताओं, साल 2002 में आज ही के दिन 24 सितंबर के दिन गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम परिसर में एक आतंकी हमला हुआ और इस घटना में कई नागरिकों की जान गई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम को स्थिति संभालने के लिए भेजा गया और अभियान के दौरान NSG के जवान RII सुरजन सिंह ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये 24 सितंबर के इतिहास का वो पन्ना है जिसे उपलब्धि के रूप में नहीं बल्कि एक दुखद स्मृति और सुरक्षा बलों के साहस के संदर्भ में याद किया जाता है। और अब इस तारीख को एक बार फिर नए नज़रिए से देखते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। साल है 2014 और भारत की नज़र धरती से दूर मंगल ग्रह पर। 24 सितंबर साल 2014 को भारत का मंगलयान लगभग 10 महीने की अंतरग्रहीय यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करता है। भारत के पहले अंतरग्रहीय मिशन की ये सफलता इसलिए भी बेहद खास थी क्योंकि भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने का ये शानदार इतिहास रचा। एक तरफ साल 1932 में देश अपने सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसलों से गुजर रहा था और 82 साल बाद वही देश अंतरिक्ष में अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दे रहा था। यही तो इतिहास है, एक ही तारीख लेकिन बदलते वक्त के साथ बदलते भारत की कहानी। हम भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक गीत के लिए रुकेंगे और आज के इतिहास की बाकी जानकारी इस गीत के बाद साझा करेंगे।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। आज का इतिहास, उसके बारे में जानकारी हम साझा कर रहे हैं। मुख्य घटनाओं की हमने बात की श्रोताओं। इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, कुछ लोग भी अपने काम से वक्त पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उनकी याद तारीखों के साथ जुड़ जाती है। 24 सितम्बर भी कुछ ऐसे ही नामों से रोशन है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी वीर महिला की जिन्होंने देश की आज़ादी की आवाज को सीमाओं के पार पहुंचाया। 24 सितम्बर साल 1861 को जन्मी मैडम भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में ये गिनी जाती हैं और विदेश की धरती पर भारत का ध्वज फहराकर उन्होंने देशभक्ति का संदेश दुनिया तक पहुंचाया था। इसी तारीख में हिंदी साहित्य को भी एक महत्वपूर्ण नाम दिया, प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली और पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनका जन्म आज के दिन साल 1856 को हुआ। और खेल जगत की बात करें तो वर्ष 1940 में जन्मी आरती साहा का नाम भी 24 सितंबर से जुड़ा है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली एशियाई महिला तैराक के रूप में उन्होंने भारतीय खेल इतिहास में अपनी एक खास पहचान बनाई। क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी ये तारीख खास है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 24 सितंबर के दिन साल 1950 को भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मोहिंदर अमरनाथ ने इस दुनिया में कदम रखा। अपने साहसिक खेल और यादगार पारियों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। और अब उन हस्तियों को याद करने का समय है जिन्होंने अपने कार्यों से अमिट छाप छोड़ी और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। भारत के परमाणु कार्यक्रम को नई दिशा देने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना ने 24 सितंबर साल 2004 को इस दुनिया को अलविदा कहा। विज्ञान और शोध के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। वहीं दक्षिणी भारतीय सिनेमा और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार पद्मिनी भी आज ही के दिन साल 2006 को इस नश्वर संसार से रुखसत हुई। अभिनय और नृत्य की दुनिया में उनकी पहचान आज भी बनी हुई है। श्रोताओं, ये थी 24 सितंबर से जुड़े ऐसे कुछ नामों की जानकारी जिन्होंने अपने विचारों, कला, खेल और कर्म से इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। श्रोताओं, इतिहास की हम बात करते हैं और इतिहास हर बार हमें हैरान करता है और ऐसी जानकारियां हम तक पहुंचाता है जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि इतिहास में एक बार फिर झांकें और उन जानकारियों को तरोताज़ा करें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और गीत के बाद हम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। एक बेहद ख़ास दिवस हम मना रहे हैं उसके बारे में।

सुबह के 7:30:05 समय और आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं। सुबह सुहानी कार्यक्रम सुन रहे हैं। अब कार्यक्रम में जानकारी आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, समुद्र जो अलग अलग देशों को जोड़ता है और व्यापार के रास्ते खोलता है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में बड़ी भूमिका भी ये निभाता है। इसी समुद्री दुनिया की अहमियत को समझने और समुद्री परिवहन, सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज के दिन को हर साल विश्व समुद्री दिवस यानी वर्ल्ड मैरिटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2026-27 के लिए इसकी थीम रखी गई है, फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरिटाइम एक्सीलेंस, यानी समुद्री क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियां सिर्फ दस्तावेज ना रहें बल्कि सुरक्षा, परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर समुद्री व्यवस्था में वास्तविक रूप से लागू हों, क्योंकि मजबूत समुद्री व्यवस्था का मतलब है सुरक्षित समुद्र और सुचारू वैश्विक व्यापार। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के 80% से अधिक वैश्विक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं समुद्र का रास्ता भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए 24 सितंबर हमें याद दिलाता है समुद्र सिर्फ पानी का विस्तार नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है। समुद्र, श्रोताओं, हमसे बहुत दूर दिखाई देता है लेकिन हमारी छोटी छोटी सी लापरवाही वहां तक पहुंच सकती है। घर, सड़क, शहर से निकलता हुआ कचरा नदी नालों में जब मिलता है तो वो पानी के रास्ते आगे बढ़ता हुआ बड़ी नदियों से और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाता है। तो अगर समुद्र को हम साफ देखना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने

गली मोहल्लों के छोटी छोटी नालियों और बड़े नालों तथा नदियों से करनी है, और कूड़ा जो है जल स्रोतों में हमें कभी नहीं डालना है, उसका सही जगह निपटारा करना है, क्योंकि साफ समुद्र की पहली लहर हमारे अपने शहर से उठती है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत समेत कई देशों से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सहयोग की अपील की है। बात करें श्रोताओं एशियाई खेलों की, तो जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में बीते कल भारत के लिए एक बेहतरीन दिन रहा। भारत ने 5 पदक कल अपने नाम किए, जिनमें 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत उन्होंने करीब 5.5 लाख विद्यार्थियों को एक सप्ताह में उत्तम भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अदालती कार्यवाही के लाइव प्रसारण की भी शुरुआत की गई है। सीबीएसई स्कूलों में कंप्यूटर साइंस और इन्फोटेक्स प्रैक्टिसेस की पढ़ाई तथा 11वीं कक्षा में विषय चयन से जुड़े भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बात करें मौसम की, तो मौसम के हाल में देश के कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव आज रात आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम के पास तट पार कर सकता है और इसकी वजह से देश के कई क्षेत्रों में जो है वो भारी बारिश अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मैदानी निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में 24 और 25 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 26 सितंबर से बारिश पड़ने का अनुमान है। धर्मशाला के आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि अगले कुछ दिनों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 24 और 25 सितंबर को हिमाचल के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। जी श्रोता, अब चलते चलते आनंद लीजिए इस गीत का।

0: श्रोता, ये था आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। आप सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। कार्यक्रम शुभ प्याग की शुरुआत श्रोताओं हम कर रहे हैं इस कृष्ण लोक भजन के साथ, जिसे गाया है राम स्वरूप शांडिल ने।

लोकगीतों का कार्यक्रम शुभप्याग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अंतिम लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज है सोमदत्त बट्टू की।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार आप सुनेंगे। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार, जिनमें मॉर्निंग न्यूज होंगे। ये समाचार बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशू में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न

0: राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जनसेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5,00,000 रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5,00,000 लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेन ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का 3रा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में 20 सविता शी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता शी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल दो दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का

0: वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्स पर @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, चार बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan this morning. Delhi government approves Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women in national capital. Bharat Taxi launched in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Kanpur and Prayagraj in Uttar Pradesh. All banks, including regional rural banks, to remain open this Sunday for convenience of customers. India's Roshibina Devi bags silver medal in Wushu at Asian Games in Japan. Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And India beat England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today via video conference with participants of Seva Yatra travelling from Varnagar to Varanasi under Seva Sankalp Abhiyan. The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. A report.
4: The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed to bring together service, communication, youth participation, social welfare, cultural connect and community mobilization at different different locations along the route. 10 groups are undertaking the Vadnagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Vadnagar and Varanasi involve young participants traveling across multiple states, districts and villages. During the journey, the Seva Yatris have engaged with local communities and participated in service-oriented activities. These include cleanliness drives and interactions with beneficiaries.

इस गीत ने कहा हमें प्यार हो गया, और ये बात हम भी कह सकते हैं, हमें भी प्यार है अपने श्रोताओं से और श्रोताओं को भी प्यार है आकाशवाणी धर्मशाला से। तभी तो हमारे श्रोता हम से जुड़े बिना रह नहीं पाते, और हमारी भी कोशिश रहती है कि अपने श्रोताओं का भरपूर हम मनोरंजन कर सके। और अगर अभी तक आप इस प्यार में नहीं डूबे हैं, यानी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और इस प्यार में डूब जाइए, क्योंकि इस प्यार में एक अलग ही नशा है, अलग ही मज़ा है।

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार करके देखो ना। जी हाँ, आपने भी अगर अभी तक ये प्यार नहीं किया है, यानी 103.4 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े नहीं हैं, तो कोशिश कीजिए हमसे जुड़ने की। और आप हमें सुन सकते हैं 103.4 मेगाहर्ट्स पर ट्यून इन करके, और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ फ्रीक्वेंसी का नहीं, दिल से दिल का है। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहे।

0: रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
5: कार्यक्रम गाने सुहाने में एक बार फिर आपका स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आप हमसे जुड़ते हैं, हम मुस्कुराते हैं और आपका ना हमारे दिल को धड़का जाता है। शब्दों में से बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इस गीत में सुनिए क्या कहना चाहते हैं हम अपने दोस्तों से, अपने श्रोताओं से।

दोस्तों, ये मेहंदी है हमारी प्यार की, और उम्मीद हम करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से हम अपने प्यार की इस मेहंदी की छाप आपके दिलों पर छोड़ें और इस मेहंदी का रंग कभी भी श्रोताओं के दिलों से ना उतरने पाए। और श्रोताओं से बस इतनी सी गुजारिश कि यूं ही आकाशवाणी धर्मशाला के साथ बने रहिए और बिल्कुल भी बदलिएगा मत, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी श्रोताओं की अहमियत बिल्कुल है सावन जैसी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
2: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: सिर्फ इसे नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
3: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: दिल से दिल तक पहुंचने की कोशिश में आकाशवाणी धर्मशाला से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। जी बिल्कुल, नया नया सा लगता है हमारा ये प्यार, लगता है पहला दिन है, पहला साल है हमारा प्यार का श्रोताओं के साथ।

दोस्तों प्यार में ऐसी हालत हो जाए और उस हालत से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन प्यार अगर इतनी शिद्दत से हो कि शिद्दत की इंतहा तक पहुंच जाए तो बचना ही क्यों है। आपका आकाशवाणी धर्मशाला के साथ यही तो रिश्ता है, पुराना भी अपना भी, पूरे दिल से भी और पूरी शिद्दत के साथ।

जी ये इश्क बिल्कुल रोग बुरा नहीं है जब ये इश्क हो आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, कुछ रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती, बस एक फ्रीक्वेंसी पर रिश्ता जुड़ता है और पहुंच जाता है सीधे दिल तक। और आप जिस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जुड़कर यहां तक पहुंचे हैं वो फ्रीक्वेंसी है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और आकाशवाणी धर्मशाला। जी हाँ, तो इस रिश्ते को और ख़ास बनाते हैं और कार्यक्रम में आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ये दीवानापन ये दीवानगी ये अपनापन यूं ही बनाए रखिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़, जुड़े रहिए यूं ही हमारे साथ।

इजाजत लेने से पहले चलते चलते वही एक प्यारी सी बात, कीप स्माइलिंग समहाउ, बाय फॉर नाउ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने आकाशवाणी धर्मशाला से। 9:10 होने को है। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसे रिले किया जाएगा।

0: जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया की सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही
1: जी।

0: लाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है ये सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है, सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है, क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं ले लेता है, उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं, और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके, स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया, पूरा 6.5 लाख उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया, 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है, तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे, और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे, ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में, लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे, जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था, और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया, सारे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं, तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए, और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा, लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया, और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था, लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया, और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी, और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई, और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान

0: इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है। गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है। क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे एक इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गिला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाले जो कचरा प्रबंधन के 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है। क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ, सफाई को जुड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है, जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है। और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो भी इसको समझते हैं। इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस, और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है, और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेस होते हैं, उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है, ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा, और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
2: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे। और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रिस्पांस जो है ना, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन एक दो साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर प्रयास रहा तो हमारे शहर भी आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना, और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है?
3: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए, और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा, नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में, और 2017 में नंबर एक पर आ गया, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है, तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया, और उसमें उन्होंने जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया, तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ। तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया, तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए, और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं, तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
2: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं, लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था, और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था मान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें, और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहैबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड मैनेजमेंट वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत के निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है जिसे स्वच्छ भारत बनना है,

0: ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और
1: जी
0: जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012
1: जी
0: सरकार की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की, घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने
1: जी
0: जिक्र किया सूरत वगैरह सा,
1: जी
0: वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा
1: जी
0: की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है। उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई। इसीलिए बहुत अचंबा की बात है और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ। वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया, लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है, लेकिन इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचड़े से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए, और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है कि स्वच्छ रहना है।
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए
1: जी,
0: जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा, सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है,
1: नहीं।
0: सफाई शिक्षा से आता है
1: जी।
0: घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है, निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको, वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें 2-3 बातें समझनी जरूरी है
1: जी।
2: पहले हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे
1: जी।
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है या तो सुबह उनको जाना पड़ता है और या फिर उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं, उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा कचरा है उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस जो चल रहा है तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सके। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 158,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 131,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई तो आप सोचे कि हम फिर जो हमारा कचरा है जिसको हम कचरा कहते हैं वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है इनके लिए इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए उसकी स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया है, हैजा है, आंत्रशोध होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
0: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो उस चीज के जरिए से पानी के जरिए से इंसान के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं, तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें
0: हाइजीन का कॉन्सेप्ट, इसको इसलिए वॉश बोलते हैं। वॉश को एक सेक्टर माना जाता है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है। तीनों चीज इंटरनेशनली, नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है। तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगेगा। और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का, उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का भाई, जो आप जानते हैं शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है। तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा। खाली एक्सेस से इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
0: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए। स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना, आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं, बड़े बड़े अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है। जो बोलते हैं अर्थ एयर वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से। एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
2: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं, और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत हो जाती है।
1: ये सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती,
2: बहुत मौतें हुई, और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपी किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसमें गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर

हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मनायाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और आज है सितंबर का आखिरी वीरवार यानी थर्सडे, और आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस। आप जानते हैं कि समुद्र के जरिए व्यापार जो है वो हमेशा से होता आया है और आज भी बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए दुनिया के 80% से ज़्यादा वैश्विक व्यापार का ट्रांसपोर्टेशन अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के जरिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पर्यावरण संबंधी मुद्दों, कानूनी मुद्दों, सुरक्षा, समुद्री दक्षता और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, और वो जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने, दुर्घटना और क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय बनाने, शिपिंग में ज़्यादा दक्षता बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं, और इसीलिए मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। तो ये दिन बनते रहते हैं और हम सब इनको सेलिब्रेट भी करते हैं, साथ ही साथ गानों का सिलसिला यूं ही जारी रहता है।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:50 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करने वाला हिमाचल बना देश का 10वां उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया शुभारंभ। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा को एक बार फिर मिली प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह होंगी सह प्रभारी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति की दो अहम सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता में किया शामिल। नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान किया शुरू। और प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 से 28 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल उच्च न्यायालय में अब अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने अदालत की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और उन्नत हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का कल शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट अब देश का ऐसा 10वां उच्च न्यायालय बन गया है जहाँ अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं बल्कि दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा आम लोगों, वकीलों व कानून के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से, देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला में आज बात अटल इनोवेशन मिशन की। अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
1: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें हिमाचल भाजपा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को प्रदेश का नया सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पच्छाद से विधायक रीना कश्यप को जम्मू कश्मीर भाजपा का सह प्रभारी बनाया गया है। हिमाचल भाजपा के प्रभारी के रूप में दोबारा नियुक्त किए गए श्रीकांत शर्मा पार्टी संगठन और चुनावी प्रबंधन का लंबा अनुभव रखते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह का राजनीतिक सफर महिला मोर्चा से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। उधर पच्छाद से विधायक रीना कश्यप की नियुक्ति को हिमाचल भाजपा के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाहौल स्पीति जिले की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता दी है। विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजोक मार्ग को प्राथमिकता एक में शामिल किया गया है। करीब 100 किलोमीटर लंबा ये मार्ग स्पीति के क्योटो को लद्दाख के कोरजोक क्षेत्र से जोड़ेगा और सीमावर्ती क्षेत्र का वैकल्पिक संपर्क मजबूत करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्पीति की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्राथमिकता मिली है। उन्होंने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजक मार्ग को प्राथमिकता एक में शामिल किया गया है, वहीं वांगतू मुद अतरगु मार्ग को प्राथमिकता दो में शामिल किया गया है। ये किन्नौर और स्पीति को जोड़ेगा और इससे शिमला से काजा की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि ये मार्ग क्षेत्र के विकास, बेहतर संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार, बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के महत्व के साथ घरों और दुकानों से निकलने वाले कूड़े के उचित निस्तारण की जानकारी भी दी जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
6: 17 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे। नगर निगम ने शहर में ऐसे 5 से 6 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां अक्सर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं। इन स्थानों पर अभियान के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी। निगम का प्रयास लोगों को समझाकर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की आदत को बदलना है। इसके बावजूद यदि लोग आदत नहीं बदलते हैं तो हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने की तैयारी है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। कांगड़ा जिला की महिलाओं के लिए आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई है। पालमपुर के सुंगल में मिशन शक्ति के तहत जिला कांगड़ा के पहले शक्ति सदन यानी स्वाधार गृह का शुभारंभ किया गया है। ये सदन कठिन परिस्थितियों से गुजर रही महिलाओं को न केवल सुरक्षित आश्रय देगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
7: योजना के तहत जिला कांगड़ा का ये पहला स्वाधार गृह है जहां विभिन्न पात्र महिलाएं सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर पाएंगी। सदन में प्रत्यागता, विधवा, तलाकशुदा और बेघर महिलाओं के साथ साथ घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न या अन्य प्रकार के शोषण से प्रभावित महिलाओं को आश्रय और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मानव तस्करी से मुक्त कराई गई, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संकट से प्रभावित तथा बिना आश्रय के जेल से रिहा हुई महिलाओं को भी यहां सहायता मिल सकेगी। शक्ति सदन जरूरतमंद महिलाओं के लिए सुरक्षित छत के साथ साथ नई शुरुआत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपुल शर्मा।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आज से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके चलते आज व कल राज्य के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं विभाग ने प्रदेश में 26 से 28 सितंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द हैं।

0: अनुबंध कर्मचारियों से अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने खबर को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है। घेपन झील की स्थिति खतरनाक, 5 मिनट में मचा सकती है भारी तबाही। दैनिक भास्कर के अनुसार पर्यटन स्थलों पर एंट्री टैक्स लगाने की तैयारी। दैनिक जागरण का कहना है HRTC के बेड़े में आएंगी 350 नई बसें, पुरानी JNNURM बसें हटेंगी। पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा लंबित एरियर, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करने वाला हिमाचल बना देश का 10वां उच्च न्यायालय। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने किया शुभारंभ। वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा को एक बार फिर मिली प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह होंगी सह प्रभारी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति की 2 अहम सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता में किया शामिल। नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान किया शुरू। और प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 से 28 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: ME पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। जी हां, सुबह के 10 बज चुके हैं और यहां पर सिलसिला शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीतों का कारवां का। आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म के इस गीत से। एंजॉय कीजिए और दिल से यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां प्रोग्राम, और आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं कुछ ऐसे म्यूजिकल नंबर जिन पे आप थिरकने के लिए मजबूर होने वाले हैं।

जी हाँ लिसनर्स, इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग हम आपकी रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, फिल्म है वॉर।

जी हाँ लिसनर्स, अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और शिल्पा रॉय की आवाज़ों में वॉर फिल्म का ये गीत। और नेक्स्ट जो सॉन्ग हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म बैंग बैंग से।

जी हाँ, गीतों का कार्यक्रम प्रोग्राम में नेक्स्ट सॉन्ग हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, कनिका कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आवाजों में। ये गाना आप सुन रहे हैं दिलवाले फिल्म से। ऐसे ही गीतों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम है गीतों का कारवां।

जी हाँ लिसनर्स, इसी के साथ आज का गीतों का कारवां प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

पहाड़ों की सुर कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बंसी भारद्वाज की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ। लोक गीतों का आनंद लेने के लिए यूं ही जुड़े रहिए आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

जी हाँ श्रोता, हिमाचली लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए भुवनेश कुमार की आवाजों में।

श्रोतो पहाड़ों के सुर कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बसंत लाल ठाकुर की आवाज में अगला लोकगीत।

श्रोताओ, अभी आपने सुना डॉक्टर लहरू राम सांख्यान की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बिमला चौहान की आवाज़ में।

श्रोता, इसी के साथ हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ों के सुर यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि टीम के प्रत्येक सदस्य ने इस गौरवपूर्ण सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना पहुंच जाए। प्रधानमंत्री ने ये बात गुजरात के वड़नगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है और यही जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया ने हिमाचल उच्च न्यायालय में अदालत की कार्रवाई का सीधा प्रसारण और उन्नत हाइब्रिड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का कल शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश हाईकोर्ट अब देश का ऐसा 10वां उच्च न्यायालय बन गया है जहां अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा आम लोगों, वकीलों व कानून के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाहौल स्पीति जिले की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय ने प्राथमिकता दी है। विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजोक मार्ग को प्राथमिकता 1 में शामिल किया गया है। करीब 100 किलोमीटर लंबा ये मार्ग स्पीति के क्योटो को लद्दाख के कोरजोक क्षेत्र से जोड़ेगा और सीमावर्ती क्षेत्र का वैकल्पिक संपर्क मजबूत करेगा। अधिक ब्यौरे के साथ लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि स्पीति की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्राथमिकता मिली है। उन्होंने बताया कि सुमदो क्योटो कोरजक मार्ग को प्राथमिकता 1 में शामिल किया गया है। वहीं वांगतु मुद अतरगु मार्ग को प्राथमिकता 2 में शामिल किया गया है। ये किन्नौर और स्पीति को जोड़ेगा और इससे शिमला से काजा की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। विधायक अनुराधा राणा ने कहा कि ये मार्ग क्षेत्र के विकास, बेहतर संपर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें हिमाचल भाजपा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह को प्रदेश का नया सह प्रभारी बनाया गया है। वहीं पच्छाद से विधायक रीना कश्यप को जम्मू कश्मीर भाजपा का सह प्रभारी बनाया गया है। नगर निगम हमीरपुर ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 माह का स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया है। ये अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के महत्व के साथ घरों और दुकानों से निकलने वाले कूड़े के उचित निस्तारण की जानकारी भी दी जा रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: 17 सितंबर से शुरू हुआ ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने के लिए प्रेरित करेंगे। नगर निगम ने शहर में ऐसे 5 से 6 हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं जहां अक्सर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं। इन स्थानों पर अभियान के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी। निगम का प्रयास लोगों को समझाकर सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की आदत को बदलना है। इसके बावजूद यदि लोग आदत नहीं बदलते हैं तो हॉटस्पॉट वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
3: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी।
4: महक पंजाबी तोड़ा स्वागत है। बीटा ना जोश बोलना ना तड़का, यह है महक पंजाब दी। लो पेश है पीला संगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओं, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओं, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी।
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे, भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
2: बिल्कुल।
3: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
3: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी।
3: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लज्लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा।
2: जी।
3: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज्लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं। और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
3: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
2: जी।
3: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द

0: जाते।
1: जी,
0: यही तो है नवाचार।
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
0: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
1: जी,
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
0: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
0: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए सोचिए सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमाकर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी

0: उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
1: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
2: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
1: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
2: अच्छा,
1: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
2: अच्छा,
1: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है।
2: हाँ
1: ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
1: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए

0: थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा,
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर आ गए हैं हम आप सभी के मनोरंजन के लिए सैनिकों के लिए कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रेम रोग फिल्म के इस गीत के साथ।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सरगम फिल्म से।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

सैनिक भाइयों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सरगम फिल्म से ये गीत। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सनम बेवफा फिल्म से ये गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वालियां बहनों जो नमस्ते कने सारियां जो राम राम। बहनों अपने हुनर जो निखारी करी अपने आप जो सशक्त बनाना जिंदगी दा सब ते बेहतरीन फैसला है। कौशल विकास ही आत्मनिर्भरता कने सफलता दी पहली सीढ़ी है। कने अपने हुनर जो पहचानी करी ते जो आय दा साधन बनाना बड़ी वड्डी गल है। तो बड़े जिस काम करने च असांदी रुचि होए कने काम करने च अच्छा लगे आनंद होए जियां कि भई पेंटिंग करना खाना यानी कि कुकिंग राइटिंग जिन्हां दी अच्छी लिखाई है कोडिंग करना पब्लिक स्पीकिंग जियां कि भई अजकल तो देखिए भी जारी तक असां अच्छा बोलना नहीं आता है तो असां कोई भी नेता अभिनेता जड़ा सा नहीं बनी सकते। कने इस कने अपना बुटीक चलाना खेतीबाड़ी च असां मशरूम लगाना मधुमक्खी पालन करना होर भी बड़े सारे काम हैं जिस विच असां रुचि रखते हैं। कने तिना कम्मां च असां दी रुचि ना होए तिना च ज़्यादा फायदा असां नहीं ले सकते। बहनों असां कोई भी काम करते हैं तो पहले जेड़े अनुभवी लोग हैं तिना ते सीखना जरूर चाहिए कने कम जेड़े सा बढ़िया असां करी सकते हैं। अपने कम्मे जो निखारने वास्ते एक दो घंटे जरूर देने चाहिए। तो बहनों शुरुआत च थोड़ी ज़्यादा असां मेहनत करना पौंदी है कने अपने इलाके दे लोगों कने जुड़ना भी जितने लोग हैं तिना कने संपर्क होना उतना ही अगे असां बढ़ी सकते हैं। तो बहनों जल्द ही असां अपनी ताकत अपने कौशल पर काम करते हैं तो असां दा आत्मविश्वास बढ़ता है सफलता दे नोए नोए रस्ते जेड़े से खुली आते हैं कने अपने आपे जो मजबूत बनाना पौंदा है। तो बहनों शुरुआत छोटे कम्मे ते करनी चाहिए छोटा स्टार्टअप यानी कि बिजनेस चलाई सकते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही असली सशक्तिकरण है। सब तो पहले ये जड़ा हुनर है तो जो चुनना तो इस बिच असां दी रुचि होए फिर लगातार अभ्यास सही मार्गदर्शन होना भी जरूरी है। अज पढ़ी लिखी महिला जड़ी इसे फैशन डिजाइनिंग च अच्छी इनकम लिया करती है अपने कने 10 होर महिला जो भी सह रोजगार दिया करती है सबनी दी रोजी रोटी चला करती है। तो बहनों कला या कोई भी तकनीकी काम जड़े से असा करी सकते हैं कने असा घर बढ़िया चलाई सकते हैं। बहनों बेसिक कॉन्सैप्ट जेड़े से तरीके जेड़े हैं से पहले बढ़िया तरीके कने सीखने चाहिए कने अपने बने जेड़ा सामान है बड़िया जेड़िया चीज़ा है मार्केटिंग भी असें जरूर होना चाहिए कने कठिन समय होए ता भी निर्णय लेना चाहिए। तो गल्ला जेड़िया से बहनों अज बड़िया है ना कने हूँ इसते पहले हाँ सुना देने प्यार दिया लोक गीत

0: लोकगीत ते बाद कार्यक्रम च बैणो असा फिरी हाजिर हैं कन्ने इसते पहले जड़ी गल होआ करदी थी सह होआ करदी थी रोजगार दी। बैण पहले कुछ समान असा तैयार करना है कन्ने फिरी जड़ा समान जड़ा असें बैणो तैयार करी असा तिस जो सोशल मीडिया या यूट्यूब च भी असा सह तिसियो या इंस्टाग्राम च कोई भी पेज शेयर करके असा तिसियो जड़ा सह चलाई सकदे न तिस जो पेज बनाई कि असा सह समान जड़ा सह अपना बेची सकदे न। कन्ने ये जड़े हुनर होंदे बैनो इस ते पता चलता कि असा जो इना ते जड़े सह नोए नोए मौके जड़े सह असा जो मिलते न। कन्ने बैनो भाई घरे बैठी कन्ने असा अपना व्यवसाय चलाई सकदे न जेड़ा असा काम करा दे न सह भी बैनो सह काम जड़े सह असा तिसते असा कई जड़े सह पैसा कमाई सकदे न। कन्ने बैनो भाई तिसती जड़ा हाँ हुनर है हाँ वाला तिसती बाजार विच क्या वैल्यू है तिस दे बारे च इस जो कियां भाई असा करियर बनाना है कन्ने ये बिजनेस च असा कियां चलाना है तो बड़ा कौशल इस कन्ने कला कारीगरी या कुसी कम्मे जो बढ़िया तरीके कन्ने सोचने दी जड़ी योग्यता ऐसे असा दे विच होना चाहिदी। कन्ने इस कन्ने बैणो भाई हुनर भी असा वाला होना चाहिदा कन्ने असा जो महारत जड़ी से हासिल होना चाहिदी। कन्ने बैणो इस कन्ने भाई तो हम दिखा दे होने कि भाई जल भी असा कोई कम करते न कोई कम चलांदे न बैणो ता कई जड़ी सा असें परेशानियों का सामना भी जड़ा सा करना पौंदा है। कन्ने असा दिखदे कि भाई जल्दी असा वाला कोई रुचिकर जड़ा असा दा कम है सह जड़ा सह असा तिस जो बढ़िया तरीके कन्ने असा चलाई सकदे न। कन्ने बैणो भाई तुहां अगर दिखा कि भाई असा कई बारी इन जड़ी सह गल जड़ी सह करी चुके ना कन्ने इस च फिर तुम दिखा होना कि कटिंग होई कटिंग च फिर दुपट्टे च मोहरी लगाना साड़ियाँ च फॉल लगाना कन्ने इस कन्ने बैणो भी घरे दे काम जड़े असा करने दे बाद भी असा अपना जड़ा सा कोई भी कार्यक्रम जड़े सा हाँ चलाई सकदे न। इस कन्ने सेवियां बनाना बड़ियां बनाना शीरा बनाना कन्ने बैणो फिर से हाँ पैकटा च पैक करी कन्ने तिस जो जड़ा सा असा बाजार या दुकाना च बेची सकदे न। अजकल इन चीज़ों की बड़ी मांग है क्योंकि भाई काम काजी नौकरी पेशे वाली जड़िया भैन न सह तीन जो समय जड़ा सा घट मिलता कन्ने कन्ने फिर सह तीन अगर घर द्वारे चीज़ा बनिया जड़िया सह मिली आदियां ने बैनों तो फिर होर चीज़ों की जी जरूरत नहीं पौंदी है। कन्ने इस कन्ने भी असा डिजाइनर कोटियां स्वैटर जुराबा मफलर या बच्चों के जोड़े स्वैटर सैट न सह भी बनाई सकते हैं असा बाजार च लियाई सकते हैं या अपनी दुकान लाई सकते हैं सब्जियां लगाई सकते हैं मुनाफा ले सकते हैं। इस वास्ते बन ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी जी जरूरत नहीं होंगी सिर्फ चीज़ बेचने की तरकीब स्किल जरूर असा जो होनी चाहिए तो बनो घर सजाने वाली चीज़ा भी असा बनाई सकते हैं। कहीं इन्हों की बड़ी जरूरत होंगी है बड़ी मांग होंगी है। नर्सरी भी असा चलाई सकते हैं काफ़ी फायदा होंदा इन्हां ते। इस कन्ने मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन दा व्यवसाय भी असा चलाई सकते हैं। कन्ने बैणो जे तू पानी दी सुविधा होए ते तू कई भाई बहन जड़े सा मछली पालन भी करा कर दी कन्ने बैणो 10-15 महिला मिली करी जड़े से डेयरी फार्म भी चला कर दी कन्ने अजकल दुध भी बढ़िया कीमत च बिका करता है खोए का काम भी जड़ा सा बैणो चला करता है तो हूँ तो बैणो बड़े सारे ऑप्शन हैं सिर्फ काम करने की रुचि उन्होंने हुनर असल अंदर होना चाहिए कन्ने आत्मविश्वास चाहिए ता ही सारे काम जड़े से चली पौंदे न। तो बैणो असां दी जिंदगी जड़ी है ना सह एक ईसीजी दे ग्राफ सही है जड़ी कदी उपर तो कदी नीचे होंदी रहिंदी है असां दी जिंदगी उलट फेर उतार चढ़ाव कन्ने भरोई है। इस दा समय समय पर असां जो सामना भी करना पौंदा है पर जल्दी ये परिवर्तन आउंदा है तो भी कुछ ना कुछ जरूर असां जो सीखने जो मिलता है, बेहतर जिंदगी दी सीख असो मिलती है। अगर बहनों अस अपने आपे जो उस स्थिति ढाली लैन तो एक अग्नि परीक्षा से घट नहीं आता है। तो बहनों जाली असं जो कोई कम चलाते हैं तो कोई परेशानियां आदि हैं तो फिर असं जो मजबूत बनना पौंदा है, ताही लक्ष्य जोड़ा सा तिस तक अह पुजी सकते हैं। असं जो कुछ कम करने की सोच रखने की जिंदगी क्या करना है, कियां अपनी आमदनी बधानी है, सोच बड़ी रखनी है। जियां कि भी संगीत होए, कला होए, मार्शल आर्ट होए, खेलों च अगर रुचि है कहना अजकल तो वैनों तो दिखा होना कि भाई सोशल मीडिया च भी असा आमदनी जड़ से लिया करते हैं। तो बहनों कम ज़्यादा चले या घट चले हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बहनों संगीत, कला, मार्शल आर्ट ये असा जो बचपन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वधिया अभ्यास असा जो होया कने समय पर असा कम शुरू करी सकन। बहनों कई बारी असा काम सीखी लेंदे न, समान भी चला बनाई के रखते हैं कने सोचते भी ये जो हाँ कि बेचना है, असा मेलिया च अपना स्टॉल लगाई सकते हैं या मार्केटिंग तो पहले शुरू करी सकते हैं। कने सारे जो पता होना चाहिए कि भाई अपना काम चलिया है तो भाई कियां ते इन्हां कने कॉन्टैक्ट करे। तो बहनों अज तुसां दिखा दे होने कि भाई कितने बड़े बड़े जिहड़े समूह सहायता समूह चला करते हैं, तिना जो वधिया लोन भी मिली आ करदा अपनी आए, महिला जिहड़ी सा खुद लिया करती है, घर की स्थिति भी सुधारा करती है, परिवार भी चला करते हैं, कहना अपनी जिंदगी भी वधिया चला करती है। तो बहनों हर महिला चाहती कि भाई मेरा घर परिवार वधिया चले, कितनी भी मेहनत करना पवे, पढ़ी लिखी महिला अज कोई भी काम चला ही लिया करती, पर जिहड़ियां घट पढ़िया लिखिया बहना हैं सह मिली जुली करी अपना काम चलाई सकदियां। अपने कमे की गल ये है हुंदी कि भी जल्दी भी घरे दे काम कमाए न, समय नहीं मिलता है या घट मिलता है तो भी असा अपना व्यवसाय जिहड़ा सा घरे बैठे ने चलाई सकते हैं। इस करी हिम्मत कने आत्मविश्वास होना जिहड़ा सा बड़ा जरूरी है। तो बहन कार्यक्रम च हुण पहले लेना है असा विज्ञापन, उसके बाद सुनना है गीत।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी

लोक गीत बाद कार्यक्रम च असा एक बारी फिर हाजिर है ना कन्ने बन हुण गल करनी है विश्व समुद्री दिवस की। यह हर साल जेड़ा सा सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार जो मनाया जाता कन्ने 2026 च यह 24 सितंबर यानी कि अज के दिन मनाया जा करता है। तो बनो हर साल कोई ना कोई थीम यानी कि उद्देश्य जरूर रखा होता है कि असं की जानी पहचानी दुनिया के बारे असं महासागर कन्ने एक नवा रिश्ता यानी कि पुनर्कल्पना हमारी जानी पहचानी दुनिया के परे हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। तो बड़ा ही उद्देश्य जैसे असं महासागर जो केवल एक दूजा ही भी जलराशि मनने के बजाय अपने रोजमर्रा की जिंदगी जलवायु कने संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मनने लिए प्रेरणा मिलती है। महासागर के महत्व के बारे च जागरूकता बधाना कने जेड़ी भी संसाधन तिना दा असा उपयोग करते हैं ना इस दी शुरुआत पहली बारी 1992 रियो डी जनेरियो च पृथ्वी शिखर सम्मेलन च हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महा सभा ने 2008 च इस जो अधिकारिक तौर पर मनाने की घोषणा भी की। तो बहनों समुद्रा की धरती च ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है कने ये जलवायु जो भी नियंत्रित करने च अपनी भूमिका जड़ी सा निभांदा है। इस करी इना जो इना दा संरक्षण होए कने बचाव होए उपाय लगातार विज्ञानिक जड़े से सोचा करते हैं ताकि पृथ्वी च रहने वाले लोगों का कोई नुकसान ना होए कने बिनो जहाजा का डिजाइन निर्माण उपकरण कने संचालन लई अंतरराष्ट्रीय मानवताएं किए हुए हैं। जहाजा द्वारा फैलने वाला समुद्री कने वायुमंडल प्रदूषण जो रोकना है कने इंटरनेशनल शिपिंग वास्ते एक निष्पक्ष कने प्रभावी

प्रणाली तैयार करना है। आईएमओ यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिड़ी जहाजों की सुरक्षा समुद्र होने वाले प्रदूषण जो रोकने का नियम बनाती है। तो बिनो कार्यक्रम च हूँ गल करनी है खान पान की। तो बिनो सब्जियों भरवा सब्जियां जी सारे जो पसंद आंदियां भरवा सब्जियां दो दिन अस रखी सकते हैं खाई सकते हैं कने झट जी खराब भी नहीं आंदियां कने भरवा भिंडी अस कई तरीके कने बनाई सकते हैं। सादा मसाला बनाई करी मसाले च बेसन का इस्तेमाल करने ते मसाले च पनीर या आलू मिलाई करी प्याज लसन भुनी करी मसाला भरी करी भी भिंडी बनाई सकते हैं। तो बहनों 300 ग्राम मध्यम आकार की भिंडी लैनी कने मुलायम बेसन एक चम्मच जरूरत होए ता तेल 3 चम्मच कने जड़ी सौंफ पाउडर 2 छोटी चम्मच जड़ी सै लैना कने धनिया पाउडर 2 चम्मच लाल मिर्च हल्दी छोटा चम्मच अमचूर कने आधा चम्मच गर्म मसाला अदरक कद्दूकस कित्या है होए कने जीरा नमक बैण पहले भिंडियां जड़ी से बढ़िया दोई बनाई लैनी है कने सुकानी है भिंडियां दे दोनों तरफ डंठल कटी लेने कने भिंडियां जो एक तरफ जड़े से बिच्चे ते कटी लैना कने ध्यान रखना कि भी सह एक दूए ने जुड़िया रहन हींग कने बेसन जो छड़ी करी सारे मसाले प्लेटा च निकाली लैने कने से मिलाई देने एक छोटी कढ़ाई लैनी एक चम्मच तेल पाना तिस विच कने हींग जीरा पाई के सह जीरा तड़कना देना कने बेसन पाई ने भुनना फिर सारे मसाले पाई देने कने सह भुनने कने ठंडा होने देने एक एक करी सारियां भिंडियां च भरी लानियां 2 चम्मच तेल गर्म करना कने सारियां भिंडियां पाई देनियां कने धीमी आंच से पकना देनी कने ढक्कन लगाए करी फिर 2-3 बारी से पलटियां कने तेज जड़ी से फ्लेम रखनी कने फिर भिंडी जड़ी से तैयार हो जाती। तो बहनों ये खाने जो बड़ियां स्वाद होंदियां ना कने एक हर कोई जड़ से इन्हां जो खाना पसंद करता है। तो कार्यक्रम च हुण एक और लोक गीत सुनाना तो सुना देने प्यार दिया लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का एक बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीकानेर गए हैं तो आपको कैसे लगी वहाँ की आबो हवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन? और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ, 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेहिल व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था, आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहाँ राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है, बनारस की गलियाँ जीवन का दर्शन कराती हैं तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है, आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज़्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज़्यादातर कहानी मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखने की बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल, कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहाँ के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था, आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गायकी याद दिलवा दी, जो मांड गायिका पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर, और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर भी घूमा हूँ, ऊँट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वहाँ फिर से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा, जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहाँ कहाँ घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफ़र के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें, और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई, हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है, बताइएगा। अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहां जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत। अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं,

या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है या आप जिसे बहुत मिस करते हैं। या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है जंगली।

हमारे श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हो कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या

0: अब कहाँ हम पहुंचेंगे ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहाँ बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बम्बई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए। जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता। मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहाँ पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्म भूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं। धार्मिक सौहार्द की नगरी है। पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध, संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है। ख्वाजा साहब की दरगाह है। राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी कचौड़ी मिलती है और कढ़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। सोन हलवा मिलता है और मुंबई मेरी जान है। लाल बाग, चा राजा, गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूँ तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना ज़रूर मेरे जहन में आता है जहाँ नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुँच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। जी हाँ, बम्बई से गई पूना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएँ, किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर आहा, ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान, है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हाँ, हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी ये गीत में आता है। फिल्म जानी मन इलाहाबाद में पैदा हुई में जबलपुर में पली। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बम्बई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखती है कि मैं लखनऊ की हूँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ ना कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है, और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीज़ें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुँच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा। आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ।

झुमका घिरा रहे बरेली के बाजार में। तो चलिए, बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खां की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। तो हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूँ जहाँ से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूँ, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके ये हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूँ जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाणा ना नखरा बदा, नाणा नासो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वड़ोदरे लावो लऊ ने करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह, क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भाव

0: નગર ભાગી જઈશ, રખડીશ હું રાજકોટ, પણ તારી સાથે નહીં રહું, મને મંગાવીશ તું લોટરી. और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है. बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है. आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में, और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं. हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है. सच मानिए, बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है. बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है, और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं. सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि आज हमारा सफ़र भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है. क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने. तो अब चलते हैं कहाँ, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत. आइए सुनते हैं ये गीत.
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी.
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं. अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूल ही गई और आगे निकल गई. चलिए सुनते हैं इस गीत में. और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी की आवाज है. फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी.

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राजे का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूँ और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूँ और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूँ। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखती है, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ और मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाज़ार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही है, लेकिन हमने अपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूनी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गए लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियाँ, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लांग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का ये वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अपितु पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई, कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्मस्थान है और यही एक कारण काफ़ी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफ़ी नज़दीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ़ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, फिल्म का नाम CID।

0: जान।
1: जी हाँ, बॉम्बे मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। तो आप मुंबई आए होंगे और अपने अनुभव किसी अन्य कार्यक्रम में साझा कीजिएगा और हम उसका जिक्र इस कार्यक्रम में ज़रूर करेंगे। फिलहाल अब बहुत हो गया, खूब घूम लिए, है ना? क्योंकि अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि आपके साथ इस सुरीले सफ़र को और लंबा ले चलें। तो चलिए, यहीं तक आज का ही सफ़र। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्ते। आज त्रिवेणी में हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कला होती है, जो जितना अधिक कार्य कर लेना चाहता है और जो जितना अधिक पढ़ता है उसमें उतनी अधिक जिज्ञासा होती है, उसे यदि सही समय पर प्रश्नों के

उत्तर मिल जाए या उसे क्या करना है इनका व्यावहारिक ज्ञान मिल जाए या ढूंढ लें, तो वो अपने जिंदगी को बेहतर बना सकता है, संवार सकता है अपने सपनों को।

अक्सर हमारे दिलो दिमाग में हजारों प्रश्न चलते रहते हैं। हमारे इतने सारे विचारों में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। इनमें अनगिनत विचारों के बीच हमें अपने उन विचारों को चुनना चाहिए जिन पर हमारी जिंदगी निर्भर होगी। वो विचार हैं अपने लक्ष्य का विचार, जो भी हमारा लक्ष्य है उसका विचार, उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

हम अपने लक्ष्य के साथ जीना शुरू करें, हमारा लक्ष्य सोने, खाने, उठने, बैठने में शामिल हो और उस लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को ढालना शुरू करें और जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को अपने अंदर समाहित करें।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में

0: में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
0: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है, उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा।

0: साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
3: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
4: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात

0: में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
1: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज लेके जा।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जाल। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
4: पैदा हुआ।
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: मोहम्मद रफी का गाया अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, बन सारे अपन नरब दसा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया,
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बा में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध
4: भारती FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों ना पहुंच जाए। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है और यही भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति बन सकती है।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता और उसकी प्रमुख लाभार्थी भी होगी।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे

0: बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: इस दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि मेले व त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं, जिनका संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सिरमौर जिला के सराहा में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या को संबोधित करते हुए कल उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने ये भी कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत 85 करोड़ रुपये की लागत से 11 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कों के निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनका कार्य शुरू किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने बताया कि पच्छाद क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा गिरी नदी पर चब्योगा के पास 14 करोड़ रुपए की राशि से पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया। भाजपा युवा किसान व महिला मोर्चा ने आज शिमला में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों के कारण शिमला शहर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, ट्रैफिक, पानी, पार्किंग और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।
2: हमारे शहर में, हमारे जिले में, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, पार्किंग, ट्रैफिक और अस्पतालों की जो हालत इस सरकार ने की है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से सभी मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर धरना हो रहा है और सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि आप सड़कों की हालत देख लें। हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुँचाना है तो गड्ढे इतने बड़े हैं कि आज जनता को ये पता नहीं चल रहा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। आईजीएमसी से कार्डियो डिपार्टमेंट इन्होंने पूरी तरह से चिमियाना शिफ्ट कर दिया है।
1: सिरमौर जिला के दूरदराज इलाके में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को अब डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर तकनीक की जानकारी मोबाइल कंप्यूटर वैन के जरिए मिलेगी। विधायक अजय सोलंकी ने नाहन में मोबाइल कंप्यूटर वैन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कहा कि इसके माध्यम से 1ली से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन सहित AI के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में क्षेत्र के दूरदराज व ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल की गई है।
3: कंप्यूटर एजुकेशन आने वाले समय में अनिवार्य हो गया है, उसी के मद्देनजर आज एक मोबाइल वैन को फ्लैग ऑफ किया है, जिससे ये सभी स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 1st to 12th तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। इसमें AI का टूल भी इन्होंने इंस्टॉल किया है, तो आजकल AI का भी जमाना है। आने वाले समय में सभी लोग स्किल्ड हों और कंप्यूटर एजुकेशन सभी तक पहुँचे।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सिरमौर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सतीश शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भाजपा सेवा संकल्प अभियान के रूप में मना रही है, जिसके तहत भाजपा प्रदेश सहित देशभर में 1 माह तक सेवा एवं जनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर नाहन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हिमाचल की देवभूमि से उनकी दीर्घायु और यशस्वी जीवन के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा और समर्पण की भावना के साथ मनाएंगे। हर घर में दीप जलाकर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उन्होंने कहा कि PM के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और महाशक्ति बनने की राह पर है। पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के प्रयासों का आभार जताया। नाहन में सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों से ये महत्वपूर्ण परियोजना अब सिरे चढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि लंबे समय से इस परियोजना को लेकर प्रयास किए जा रहे थे और केंद्र सरकार ने इसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि परियोजना से लाभान्वित होने वाले 6 राज्यों में से 5 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान भी किशाऊ बांध परियोजना को लेकर प्रयास किए गए थे और हिमाचल के सीएम का ये कहना है कि ये सब उनके प्रयासों से हुआ निंदनीय है। सांसद ने कहा कि किशाऊ बांध की तरह रेणुका बांध परियोजना को पूरा करवाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और जल्द बांध का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिससे एक तरफ जहां 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, वहीं दिल्ली सहित अन्य कई राज्यों को पानी की भी उपलब्धता होगी। सिरमौर जिला के श्री रेणुका जी मिनी जू में अब रौनक लौट गई है। करीब एक दशक से वीरान पड़ी लॉयन सफारी में टाइगर का एक जोड़ा पहुंच गया है। महाराष्ट्र के नागपुर से रॉयल बंगाल टाइगर का जोड़ा करीब 1800 किलोमीटर का सफर तय कर रेणुका जी पहुंचा। दोनों बाघों को विभाग की योजना के अनुसार करीब 10 दिन की निगरानी के बाद 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए बाहरी बाड़े में छोड़ा जा सकता है। टाइगरों का जोड़ा महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा से विशेष वाहन के जरिए हिमाचल लाया गया। विभाग के अनुसार इस पर करीब 1,67,00,000 रुपए खर्च हुए हैं। बाड़े को बाघों की सुरक्षा और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। माँ और बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला 19 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक आयोजित होगा। मेले के आयोजन को लेकर स्थानीय विधायक और रेणुका जी विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। परंपरा के अनुसार क्षेत्र के देवी देवताओं को मेले में आमंत्रित किया जाएगा। मेले के दौरान पारंपरिक शोभा यात्रा, रेणुका घाट पर आरती और नौका विहार मुख्य आकर्षण रहेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन, यातायात और पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं के समय त्वरित राहत एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सिरमौर जिला प्रशासन ने युवाओं को सशक्त बनाने की बड़ी पहल शुरू की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से पांवटा साहिब विकास खंड की ग्राम पंचायत अजरोली में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं का एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार किया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष प्रियंका वर्मा ने बताया कि इस खंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पांवटा साहिब ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों के 135 उत्साही युवा स्वयं सेवकों को शामिल किया जाएगा। लाडली फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से जिला सिरमौर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाडली स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। इसी योजना के तहत सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सशक्त महिला सशक्त हिमाचल संदेश पर आधारित पोस्टर का विमोचन किया। लाडली फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष शालू अख्तर ने बताया कि लाडली स्वरोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपने हाथों से तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उन्हें बेचकर आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री महामाया बालासुंदरी जी त्रिलोकपुर में नवरात्रि मेला 11 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर मंदिर ट्रस्ट की बैठक विधायक अजय सोलंकी की अध्यक्षता में हुई। अधिकारियों को मेले से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिरमौर जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
4: अभी आप सिरमौर जिला की चिट्ठी सुन रहे थे। लेखक थे सतीश शर्मा और वाचक स्वर राकेश शर्मा का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं।
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: कार्यक्रम दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
7: हाँ।
6: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशालकाय व्हेल तक अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
7: तो और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती है, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा जो गहराई होती है वहाँ पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो
6: महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वार भाटा।

0: आदि अनेक अनुसंधानों अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियाँ मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाज़ों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूँ, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी है। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल, पहली बात तो। सबसे बड़ी चीज़ है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना, वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके से।
0: सही बात है, तो इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंके, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद ले लिया जाए।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आरती हाँ। देखो हमारे साथी क्या लिखते
2: हैं
1: बताओ।
2: हाँ तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है, बल्कि एक रहस्यमयी जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है, तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही जो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी क्या सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है, जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है,

0: जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती, इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशाल काय हैं बड़े बड़े जहाज़ों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज़ का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
1: बिल्कुल। और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
0: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लइयो बुन सारे अपन नरबदा सपड़ बेचारे।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। आरती और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज़ होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौने की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब ज़रूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा।

0: छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
1: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बार्ले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
0: बिल्कुल, और उषा बार्ले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बार्ले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बार्ले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बार्ले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियाँ उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
0: बिल्कुल, पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बार्ले की आवाज़ बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज़ अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुँच चुकी थी।
1: उषा बार्ले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
0: बिल्कुल, उषा बार्ले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
1: इतने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल,
1: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत ज़रूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, उस छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दें तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फ़ायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
1: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी?
5: हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
3: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि इन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
5: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे, मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए।
3: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझ में एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती हैं। मतलब ये
5: है?
3: चाय पीने के लिए गाने गाके
5: मना लेते हैं।
3: बिल्कुल मना लेते हैं।
5: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के ज़माने के गाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
3: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
5: सब बजते हैं। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
5: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
3: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए। हमें गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
5: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है, और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त, दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
3: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज़्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा, और ज़्यादा ज़ोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
5: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसा रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
3: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
5: है ना।
3: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
5: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
3: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठें, रिश्तों में नाराज़गी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराज़गी की समझ ये कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराज़गी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमज़ोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये ज़रूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराज़गी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहां प्रेम है वहां अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहां अपनापन है वहां छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं, बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं, तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी हैं जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटें, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीज़ें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीज़ें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो हैं वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियाँ जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखते हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियाँ ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास हाँ सारे श्रोता रहते ही हैं,
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठ।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: 2-3 बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल
1: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ
0: जी? कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी। मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा, मैं जैकेट

0: 10 बार देखी है।
1: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
0: हाँ जी, गुंजा करोल बहुत अच्छा लगता है। गुंजा और चंदन करोल, जब आखिरी माह आ जाती है ना, आखिरी माह का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी
0: अच्छा बताइए, सीहोर के क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे

0: इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परके 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर, बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
1: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती है वहाँ पर?
0: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713 और जो सरबती गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
1: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
0: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
1: अच्छा
0: जी,
1: मतलब जरा विस्तार से बताएं
0: सर। जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
1: अच्छा, क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
0: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
1: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
0: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
1: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
0: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर, मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
1: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
0: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
1: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
0: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
1: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
0: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल हैं, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
1: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: तहसील बिलासपुर।
1: अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
0: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
1: जी
0: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
1: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
0: हाँ जी।
1: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं।
0: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
1: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
1: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं, तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं।
0: बहुत बहुत
1: बात
0: शुक्रिया
1: करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं, काफी समय पहले भी।

0: मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
1: जी,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
0: एक तो आपका उजाले उनकी यादों के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम, और दोपहर में 1 बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल, दुआएं बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है, खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर

0: दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर
1: जी जी।
0: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
1: जी जी जी।
0: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
1: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
0: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
1: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
0: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनका क्या कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर,
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है
0: अच्छा,
1: बहुत। हाँ
0: और वादिय कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: सर, हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि

0: कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गांव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं, अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली
1: बहुत
0: बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना, अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए।
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिया कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना, वो जामनेर वाली जी रोड गए ना, जहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: आप
0: गांव
1: बता
0: की क्या
1: जी,
0: हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ हैं?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है,
0: हाँ, तो तैयारियां वैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा,
1: सर जी पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम, जो बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो,
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्त है सर। किसका?
0: अच्छा,
1: नाम ले
0: ऐसा। सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट होगा उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा रहा, लेकिन लगा भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजयपथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजयपथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम से इतनी

0: इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मनचाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
0: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
1: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
0: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
1: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
0: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
1: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके, पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: सकते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0227 0288 और 0224002462 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
5: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का भी आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल ने आज कहा कि विद्युत मंत्रालय नई राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार कर रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में इसका मसौदा जारी किया था। मंत्रालय ने हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों को इसमें शामिल किया है और इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन की सिलिकॉन वैली में आज 2000 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अडानी आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह हॉस्पिटल देश में अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा। इसमें 1000 बिस्तर गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप राज्य के कई क्षेत्रों में अगले कुछ वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य 3 देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों

0: निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म में प्रसिद्ध गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक से बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगी। श्रोता इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only when there is spirit of service. 4 crore poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani has stressed the need for country's defence acquisition system to adapt swiftly to keep pace with this changing character of warfare. Addressing an event organised by a media house in New Delhi today, General Subramani highlighted the importance of the integration of technology, data and industry in strengthening the defence ecosystem. He stressed upon the need to have the means to sustain, replenish and repair weapons in the battlefield. He emphasized that startups, universities, engineers, students and technology companies can all contribute towards country's mission of self-reliance and defense manufacturing. Indian Railways has approved the introduction of a new daily train service between Kanpur Central Railway Station in Uttar Pradesh and Anand Vihar Terminal in Delhi, providing an overnight rail connectivity option between the two cities. Railways has also approved the construction of a 4-lane road overbridge at Alkapuri in Vadodara Division of Western Railway. The Ministry of Railways said the cost of the project is over 166 crore rupees and will be shared equally between railways and the state government. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Electronics and IT Secretary S. Krishnan has said that India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Mr. Krishnan was addressing the inaugural session of the 13th Annual Public Affairs Forum of India in New Delhi today. The deep depression over the Bay of Bengal crossed the North Andhra Pradesh South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering extremely heavy rainfall in several parts of Odisha. The system has moved inland and is gradually weakening. However, its impact continues to be felt across Odisha, with heavy rain, waterlogging and landslides reported in several southern districts: Koraput, Nabarangpur, Malkangiri, Kalahandi, Nuapada, Balangir एंड बारगढ़ आर लाइकली टू रिसीव

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी भजन।

बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और 5:25 हुए हैं और अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

कार्यक्रम के सभी युवा साथियों को हमारा नमस्कार। युवा साथियों, हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के संघ के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अनुराधा। युवा साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन हम बात करते हैं रोजगार और विज्ञान से संबंधित। युवा साथियों, आज बात उस सवाल की है जो हर युवा के मन में है, रोजगार कहाँ है और शुरुआत कहाँ से करें। साथियों, आज सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं, अपने हुनर को समय के साथ अपडेट करना भी ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में कौशल की ज़रूरत बढ़ रही है, लेकिन रोजगार का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं है। कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता भी करियर के महत्वपूर्ण रास्ते हैं। स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण के अवसरों को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। तो युवा साथियों, आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरे अंदर कौन सा हुनर है और मैं उसे बेहतर बनाने के लिए आज क्या कदम उठा रहा हूँ। याद रखिए, मौका हमेशा दस्तक नहीं देता, कई बार हुनर ही मौके का दरवाज़ा खोलता है। तो अब बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
1: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
2: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जाँच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जाँच करवाएं और अपनी आँखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और युवा साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं होती हैं, और अगर आप में कोई कौशल है तो उससे संबंधित अगर कोई आप रोजगार अपनाने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद हो सकती है। और साथ ही आपको ये बता दें कि और भी कुछ रोजगार संबंधित पद जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में निकले हुए हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक की अगर बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता इसमें संबंधित क्षेत्र में स्नातक, बीई, बीटेक, एमबीए अथवा उस क्षेत्र से संबंधित अनुभव जो है वो इसमें मांगा गया है। साथ ही इस पद पर आवेदन की अंतिम तिथि है 25 सितंबर 2026 तथा कुछ पदों के लिए 28 सितंबर 2026 एवं 6 अक्टूबर 2026 भी इस पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में मेडिकल ऑफिसर के 228 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता MBBS तथा हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग में इसकी पंजीकरण होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इसमें आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 16 अक्टूबर 2026 तक दी गई है। युवा साथियों, और भी इससे संबंधित जानकारियां हम आपको देंगे, रोजगार से संबंधित जानकारियां हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम युवा मंच में। और कार्यक्रम में हम आपको दे रहे हैं जानकारी रोजगार से संबंधित। और अब जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा EPFO असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसकी योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और परीक्षा की तैयारी जारी है। श्रोताओं के लिए ये सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आयु सीमा, आरक्षण, अनुभव तथा अन्य पात्रता संबंधित शर्तों का विवरण संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना में अवश्य देख लें। युवा साथियों, ये तो हमने बात की रोजगार से संबंधित, और रोजगार के साथ साथ हम आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देते हैं विज्ञान से संबंधित भी। तो युवा साथियों, इस सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर विशेष जोर रहा। CSIR CGCRI कोलकाता में इन क्षेत्रों से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए नया इमर्जिंग क्वांटम और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज सेक्शन शुरू किया गया। इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अक्टूबर में NVS-03 नेविगेशन सैटेलाइट के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। इसे GSLV-MK2 रॉकेट से लॉन्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

युवा साथियों, आपने ट्यून के है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। तो कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं विज्ञान से संबंधित, और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा अक्टूबर में NVS-03 नेविगेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञान की बात कार्यक्रम का दूसरा संस्करण 26 सितंबर को आयोजित होगा। इसमें बुनियादी भौतिक विज्ञान और क्वांटम तकनीक पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ अगर बात करें स्वच्छ सुरक्षित सागर की, तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर 5.0 अभियान के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 231 स्थानों पर समुद्र तटों की सफाई की गई और करीब 15 लाख लोगों ने महासागर संरक्षण की शपथ भी ली। जी हाँ श्रोताओं, हम अगर अपने जो महासागर हैं या फिर छोटी छोटी झीलें हैं या तालाब हैं या आसपास की छोटी सी नदियां ही क्यों ना हो, उनको अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो वो भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है, और अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो हमारा जो वायुमंडल है वो खराब होगा, और वायुमंडल खराब होने की वजह से हमें जो ढेर सारी बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। तो श्रोताओं, विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आने वाले कल की तस्वीर बदलने वाली शक्ति है। श्रोताओं, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और विज्ञान की दुनिया को और भी करीब से जानिए, और आप यूं ही आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र भी सुनते रहिए, और मनोरंजन का जो सिलसिला है वो हम जारी रखते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तो दोस्तों, इसी उम्मीद और हौसले के साथ आज के युवा मंच से हमें दीजिए इजाज़त। याद रखिए, सपने वही नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें मेहनत करने के लिए जगाए रखते हैं। अपने हुनर पर भरोसा रखिए, सीखते रहिए और हर नए अवसर के लिए तैयार रहिए। तो श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और विषय और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सीखिए और अपने सपनों की ओर एक कदम रोज बढ़ाइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ देर में यानी शाम 6:05 पर कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया का। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, जो कि आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर एक ही अभिनेता के क्रम में आज सुनिए अभिनेता चंकी पांडे पर अभिनीत कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रंगे गजल। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हिमाचली गीत और 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनिए चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब एक नजर डालते हैं हमारे कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोपहर 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम सुनो सखी का। तो श्रोताओं, ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की गई है और 17000 से अधिक बागवान HPMIS पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि HPMIS पोर्टल से सेब की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा और राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि MIS के माध्यम से खरीदे गए सेब के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी मदद मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष 1 अगस्त से 213 सेब संग्रहण केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया जारी है और ये केंद्र HPMC व हिमफेड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सेब खरीद प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। रक्षा मंत्रालय ने हमीरपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड्डू के छात्र सर्वेश शर्मा को भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रुद्रा HT-1 स्पेक्ट्रा ड्रोन विकसित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सर्वेश शर्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनका ये नवाचार प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा व तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा द्वारा तैयार ड्रोन सीमा पर निगरानी में मददगार साबित होगा। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और युवा अब अपने सपनों को आत्मविश्वास के साथ साकार कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा सर्वेश शर्मा की इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन सितंबर की 24 तारीख तक भी ना मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने बताया कि निगम के 1000 नियमित, 70 डेली वेज और 500 आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसके लिए निगम प्रबंधन व पर्यटन निगम के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी करने की मांग की।
1: हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केवल मात्र 1500 कर्मचारी, जिसमें से 1000 रेगुलर और 500 आउटसोर्स पे लगे कर्मचारी, जिनको आज 24 तारीख हो गई है, तो एक महीना 24 दिन बीत जाने के बाद भी उनको आज उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं पड़ी है। टूरिज्म बचाओ बाली बगाओ, अगर प्रदेश के टूरिज्म को बचाना है तो ऐसे चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से हटाना होगा।
0: प्रदेश भाजपा सचिव सुमित शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार की वित्तीय नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ऊना में आज उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के इतिहास में सबसे अधिक कर्ज लेने वाले और वित्तीय कुप्रबंधन वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सुमित शर्मा ने कहा कि 31 जनवरी 2026 तक बकाया ऋण 1,00,000 करोड़ से अधिक पहुंच चुका था, जो अब 1,10,000 करोड़ रुपये पार कर चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधानसभा में जानकारी दी है कि पिछले 3 वर्षों में उनकी सरकार ने 35,555 करोड़ का नया ऋण उठाया है और ये आंकड़े प्रदेश की आर्थिक स्थिति की गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कांगड़ा जिला में पर्यटन कारोबार ने इस वर्ष फिर से रफ्तार पकड़ ली है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और बीते अगस्त माह तक करीब 7,00,000 पर्यटक कांगड़ा जिला के पर्यटन स्थलों में पहुंचे हैं। विनय धीमान ने बताया कि मौजूदा पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए इस वर्ष के अंत तक जिला में 9,00,000 से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
2: इस बार काफी अच्छा रिस्पांस टूरिज्म सेक्टर में मिला है। इस बार डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ा है बनिस्बत लास्ट ईयर के। इस बार जो अब तक कंपाइल डाटा है ये लगभग 7,00,000 के आसपास पहुंच रहा है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो 9,00,000 के पार इस साल कर जाएगा, तो काफी अच्छा ट्रेंड देखने को इस बार मिला है।
0: राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट PG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अनुसार कुल 2,65,960 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। बोर्ड ने बताया कि अभ्यर्थी 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ और कार्यक्रम का अगला गीत ये रहा।
1: मैंने तेरे लिए ही
0: फिल्म का नाम है आनंद, गायक मुकेश और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात का ये गीत किशोर कुमार व साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजा ग्राई दिया।

कार्यक्रम दे सारे ही भाई भैणा जो साढ़ा राम राम जी आई गए न सा तुहाड़े ट्याले पर साढ़े त्याले पर संझा दी इस प्यार भरी गलबात करने वास्ते। तां सारे जिहड़े साढ़े भाई भैण हन खेतीबाड़ी से संबंधित जिहड़े आंदे भाई भैण हन तिन्हां सारियों जो साढ़ी राम राम। कन्नै भाई भैनों अजकल थोड़ी थोड़ी ठंडक जिहड़ी है सौना शुरू होई है, कन्नै ट्याले पर भी ठंडी ठंडी हवा लग्गा दी है, तां ठंडा दा थोड़ा जिहा एहसास तां सांझो सारियां ही होवदा है। कन्नै ठंडी ठंडी हवा च थोड़ी जिहा चाही दी चुस्कियां झालू मिली जांदियां तां होर भी बड़ा मज़ा आई जांदा है ना। कन्नै सोगी जालू आकाशवाणी धर्मशाला ते तुसां कार्यक्रम सुनदे ने, कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुनदे ने, तां होर भी जिहड़ी ठंड दी मिठास है ओह बड़ी जांदी है। कन्नै साढ़े जिहड़े रोज़ाना दे कम्म हैं ओह भी सोगी सोगी चलदे रहिंदे ने। तां साढ़े किसान साथियों तुहें अज दसदे ही कि अज अहां गलबात करनी है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर। तो किसान साथियों दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार दी एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत च निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करना है। सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण वास्ते 756 बिलियन रुपए का निवेश करने की योजना बना कर दी है। कि ना इस योजना ने मौजूदा जी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान जोड़ा से ले लिया है। इस योजना ते ग्रामीण क्षेत्रों च बहुप्रतीक्षित सुधार जड़े से हो जाने न। कने इसका मुख्य उद्देश्य है फीडर पृथकरण और ग्रामीण क्षेत्रों च सभी स्तरों पर मीटरिंग सहित उपसंचरण और वितरण अवसंचरण जो मजबूत करना। इसने ग्रामीण घरां जो 24 घंटे जड़ी है बिजली से मिलनी है, साथ ही साथ कृषि उपभोक्ता जो बिजली उपलब्ध कराने विच भी मदद मिलनी है। ग्रामीण विद्युतीकरण दी पिछली योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक इस नई योजना दे घटक दे रूप दे विच शामिल कर दित्ती गई है। विद्युत मंत्रालय दी तरफ ते 6 लाख ग्रां दा वास्तविक समय डेटा उपलब्ध कराने वास्ते GARU2 नामक एक नया ऐप लॉन्च कीता है। कने इस ऐप दा उद्देश्य जिहड़ा है से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम दे कार्यान्वयन विच पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। तो किसान साथियों गलबात तो साड़ी इं चलती रहनी है, सोगी सोगी अहां दा करना है तुहाड़ा मनोरंजन। तो सुनते ने प्यारा दिया लोक भजन।

0: दिखा किसान साथियों ठंडी ठंडी आवाजा लियो कने लोक भजन जल वहाँ सुनिया था मन बड़ा मतलब बड़ा ही सुकून असा जो मिला करता है ना। कने सोगी सोगी ठंडी आवा जड़ी है साड़े खेतों विच भी चली है कने साड़ी फसलों के बारे विच तो किसान साथियों धाना धाना दी फसल असा अपनी पट्टियां च लगाई है कने हुण थोड़ी थोड़ी पानी की जरूरत भी होवा करती है तो असा हुण बरखा की उम्मीद भी करा करते हैं कहे कि थोड़ी दी अगर बरखा हो जाएगी तो ये जी साड़ी दाना दी फसल है ना से थोड़ी दी और खरी हो जानी है ना। कने मिंजरा पे गई हैं दाना बिच तेरा मिंजरा च हूँ रस जड़ा से भरी जाना है कने जालू भरी जाना तो थोड़ी दी गर्मी का मौसम चाहिए है थोड़ी दी फसल पकना भी फिर गां शुरू शुरू हो जानी है तो हूँ उम्मीद करा दे कि थोड़ी दी बरखा हो जाए कने साड़े जेडे खेत हैं से और अच्छी तरह ने से बरखा दे पानी ने और फसल दी अच्छी तरह से हो जाए। कने किसान साथियों तो हाँ तो हाँ जो सुनांदे ने एक भेंट वार्ता मटर फसल की खेती पर तो सुनाए भेंट वार्ता।
1: हमारे किसान भाई जानते हैं कि उनकी जानकारी के लिए समय समय पर हम अनेक विशेषज्ञों से भेंट वार्ता करते रहते हैं। उद्देश्य हमारा श्रोताओं किसान भाइयों यही रहता है कि हमारे किसान भाई जो हैं अपनी फसल से जो है ज्यादा से ज्यादा उपज लें और ज्यादा से ज्यादा जिससे उनको फायदा हो। आज विशेषज्ञ के तौर पर जो है डॉक्टर राजेश कंवर जो की बीज विज्ञान विभाग चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत है और विषय है मटर फसल की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी। तो डॉक्टर राजेश आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद महोदय।
1: तो हमारे किसान भाई जो जानते हैं कि जब भी कोई भी फसल लगानी होती है तो उसमें जो है मृदा का संरक्षण और मृदा का जो है खेत की तैयारी जो है बहुत मायने रखती है, तो इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी होती है मटर फसल के लिए?
2: हरा मटर जो है जैसे सभी को विदित है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बेमौसमी फसल है और मुख्य मौसम में भी ये ज्यादातर निचले और पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया जाता है। मृदा की जैसे आपने बात करी तो किसान भाई बंधु यह सुनिश्चित कर ले कि जब वो जुताई के लिए अपने खेत को तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले देखे कि उसमें अच्छे से नमी हो। यदि किसी भी खेत में उन्हें नमी नहीं दिखती है तो सिंचाई करके फिर जो है जुताई करें अपने खेतों की।
1: जी, तो इसके साथ साथ जो है मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए?
2: पीएच जो है मटर की फसल के लिए 6 से 7.5 तक अच्छा माना गया है, जिसमें इस पीएच में अगर आपका मिट्टी रहती है तो मटर के पौधों को ज्यादा से ज्यादा जो है पैदावार बढ़ जाती है और उर्वरक भी अच्छे से मिलते हैं।
1: तो खेत की तैयारी के विषय में बताइए।
2: ये जो नवंबर का जो मास है मटर के जो मुख्य सीजन की फसल है वो उसके लिए अच्छा है। तो जैसे आपने पहले ही बताया कि सबसे पहले खेत को देखें कि नमी है उसमें, 1 से 2 बार जुताई करने के बाद आप उसको खेत को बिल्कुल सीधा कर दे, समतल कर दे और फिर क्यारियां बनाए उसमें जो कि मुख्य तौर पर जो है 60 सेंटीमीटर जिसकी दूरियां हो और जो मटर का बीज है इन क्यारियों में समतल तरीके से लगा दीजिए।
1: जी, तो बीज से बीज की दूरी क्या होनी चाहिए, ये पौधे से पौधे की दूरी जो है यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होनी चाहिए?
2: बात करें तो अगेती फसल में पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो मुख्य सीजन अब नवंबर का जो उसमें भी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 7.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक रखी जा सकती है।
1: जी, तो उसके उपरांत आता है जो हमारे उर्वरक, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें जो है अपनी अदा होता है, रोल होता है, तो ऐसे में जो है उर्वरकों की मात्रा जो है क्या रहनी चाहिए इसमें?
2: जी, सबसे पहले जो उर्वरक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है सड़ी गली खाद।
1: जी,
2: तो
1: देसी गोबर की
2: देसी गोबर की खाद। तो जब आप जमीन बना रहे जोत रहे तो उस समय कम से कम 200 क्विंटल प्रति हेक्टर या 16 क्विंटल प्रति बीघा के दर से गोबर की खाद को जो है अच्छे से मिट्टी में मिला दे जुताई के समय।
1: जी,
2: फिर जब आप

0: ही ना हो, तो उसके लिए बीजोपचार प्रक्रिया अगर किसान भाई अपनाना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ करना होता है?
1: जी, सबसे पहले तो स्वस्थ बीज का चुनाव करें, अच्छी जगह से बीज लें। बीज लेते समय यह सुनिश्चित कर ले किसान बीज की थैली अच्छे से बंद हो और उस पे जो बीज की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक लेबल जरूर लगा हो, तभी वो बीज खरीदे। बीज जब आपके पास किसान के पास आ चुका है, उसके बाद वो बेविस्टिन नामक एक फफूंद नाशक बाजार में आसानी से मिल जाता है, तो उससे वो सूखी स्थिति में भी बीज से मिला सकते हैं।
0: उसका जो धूड़ा होता है उसको जो है मिला सकता है फिर,
1: जी
0: तो मात्रा क्या रहती है उसकी?
1: जी 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो सीड।
0: जी, यानी कि 2.5 से 3 ग्राम जो बेविस्टिन जो है आपने प्रति किलो बीज की दर से मिलानी है। तो उन्नत किस्मों के बारे में बताइए, उन्नत किस्में कौन कौन सी है मटर की?
1: जी, पंजाब 89 है हमारी उन्नत किस्म।
0: जी
1: ये इसके जो पौधे हैं वो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं। ये किस्म जो है 55 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी जो उत्पाद की जो क्षमता है वो 135 से लेकर 170 क्विंटल तक देखी गई है प्रति हेक्टेयर।
0: प्रति
1: और अगर हम
0: हेक्टेयर
1: प्रति बीघा की बात करें तो 12 से 14 क्विंटल प्रति बीघा। ये
0: 12 से 14 क्विंटल प्रति बीघा,
1: जी
0: इतनी
1: पंजाब।
0: ज्यादा मात्रा
1: हाँ
0: होती
1: जी,
0: है
1: उसके
0: हरे
1: बाद
0: मटर जो है?
1: हरा मटर की। हाँ जी,
0: जी
1: हरा मटर की। और अगर बीज के लिए आपने लगाना है तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें बीज भी मिल जाता है।
0: जी
1: इसके बाद जो दूसरी मुख्य जो किस्म है, जो अभी नई किस्म है, वो है हिम पालम मटर 2।
0: जी
1: ये हिमाचल प्रदेश के जो 4 क्षेत्र है हमारे कृषि वातावरण के अनुसार, उन सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। और ये किस्म जो है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में 75 दिनों में तैयार हो जाती है पहली तुड़ान के लिए, और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर 135 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। और इसकी जो उत्पाद की जो दर है वह 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
0: तो और कौन सी किस्में हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे?
1: फिर आपकी जो है एक बॉर्नविला किस्म है,
0: जी, और दूसरी?
1: और सोलन निरोग है, पालम प्रिया किस्म है हमारे पास।
0: जी
1: तो ये सभी किस्में जो है आप सभी क्षेत्रों के लिए जो
0: जी
1: हिमाचल
0: नवंबर माह में लगा सकते
1: लगा
0: हैं,
1: सकते।
0: तो नवंबर में कब तक लगा सकते हैं हमें?
1: नवंबर माह के पूरे महीने में वैसे तो मटर की फसल लगाई जाती है,
0: जो मध्यवर्ती
1: मध्य
0: क्षेत्र है
1: पर्वतीय और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र
0: क्षेत्र
1: है।
0: है वहां जो है इसकी बिजाई की जा सकती है।
1: पर
0: जी
1: जहां पर आपको लगता है कि पाउडरी मिल्ड्यू, जो
0: जी
1: चूर्ण रसीता रोग
0: रोग
1: है,
0: है जो?
1: तो
0: जी
1: उधर वहां पर हमें 15 नवंबर के बाद अगर हम बिजाई करें तो रोग जो है थोड़ा कम आता है।
0: जी तो इसके अलावा जो है एक बात रहेगी डॉक्टर साहब, के उर्वरकों की बात करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि ये जो है एक दलहनी फसल है, तो इसमें जो है कि एक विशेष प्रकार का उर्वरक भी जो है मिलाया जाता है बीजों के साथ,
1: जी जी
0: जी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: ये जो है एक सूक्ष्म जीवाणु है,
0: जी
1: ठीक है, इसको जो है राइजोबियम बोला जाता है।
0: जी
1: तो इसको आप जो है, जब आपने बीज खरीदा है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि 10% जो है चीनी का घोल बना ले और उसमें 100 ग्राम राइजोबियम मिला दें, और इसका छिड़काव जो है अपने 10 किलो बीज के लिए ये कर सकते हैं।
0: इसमें जो है मिलाना पड़ता है ये सब बीज जो है अच्छी तरह से?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी अगर बेबिस्टिन भी मिलाना है ये भी, क्योंकि एक परजीवी है ये,
1: जी
0: तो पहले कौन सा मिलाना पड़ता है?
1: पहले जो है आप जो है बेविस्टिन मिला दीजिए और उसके बाद आप राइजोबियम कल्चर ऊपर से लगा सकते हैं।
0: जी, उससे जीवाणु को नुकसान नहीं होगा कोई?
1: नहीं, क्योंकि ये जो जीवाणु है ये है बैक्टीरिया,
0: जी
1: और जो हम दवाई मिला रहे हैं वो है फफूंद फंजाई की,
0: जी
1: तो हमारे
0: फफूंदनाशक।
1: बैक्टीरिया को वो नुकसान नहीं पहुंचाता।
0: जी तो उसके उपरांत जो है जब हमने बिजाई कर दी खेत में, तो क्या कुछ सावधानियां लेने की आवश्यकता होती है? उसमें सिंचाई कितनी देनी होती है, या जो है इसमें जो है गुड़ाई कितनी देर में करनी होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: या मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, या स्टेकिंग जो डंडे लगाने की व्यवस्था करनी पड़ती है? जी
1: बिजाई के समय जैसे हम उर्वरक की भी अगर बात करें, सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं।
0: जी
1: तो बिजाई के समय हमें पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटैश की जो पूरी मात्रा है वो उस समय डालनी है, और आधी मात्रा नाइट्रोजन की बिजाई के समय डालनी है। जो बची हुई आधी मात्रा है नाइट्रोजन की उसको पुनः 2 भागों में बांट लेना है। एक भाग जो है 3 से 4 सप्ताह के बाद डालना है और दूसरा भाग जब हमारे फूल खिल जाए। तो ये तो था हमारा जब हमने बीज अपनी जमीन में डालना है।
0: जी तो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की मात्रा क्या क्या रहती है?
1: अगर जैसे बाजार में तो यूरिया फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश के नाम से ये उर्वरक मिलते हैं, तो उसी की मात्रा अगर मैं बताऊं तो ज्यादा
0: बेहतर रहेगा?
1: बेहतर रहेगा। जो यूरिया है वो 110 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, सुपर फॉस्फेट आपका जो है 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और जो आपका म्यूरेट ऑफ पोटैश है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए
0: जी
1: किसानों को।
0: तो प्रति बीघा कितनी आएगी इनकी?
1: प्रति बीघा जो है आपका जो नाइट्रोजन है उसका है आपका 8.8 किलोग्राम प्रति बीघा,
0: जी
1: जो आप सुपर फॉस्फेट जो है उसका 30 किलोग्राम प्रति बीघा है, और जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है उसका आपका 8 किलोग्राम
0: जी
1: प्रति बीघा है।
0: तो ऐसे में जो है डॉक्टर साहब, हमने जो है अगर जब नाइट्रोजन की मात्रा जो है राइजोबियम कल्चर के द्वारा दी है, तो इसमें

0: जो है नाइट्रोजन तत्वों की कमी भी होती है, कुछ कम करने की आवश्यकता होती है यूरिया की मात्रा को।
1: जो उर्वरक की जो अनुसंचित जो मात्रा बताई गई है वो तो यही है कि 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन मटर की फसल में डालना चाहिए।
0: डालना चाहिए।
1: बाकी जो एक्स्ट्रा जो नाइट्रोजन चाहिए मटर को वो अपने आप पौधा बना लेता है, क्योंकि इसके जड़ों में एक तरह की गांठे होती है जिसमें वो जीवाणु बसता है जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं।
0: जी
1: उस जीवाणु में अपनी क्षमता है कि वो जो हमारा नाइट्रोजन जो जमीन में ऐसे फ्री ही पड़ा है उसको वो एकत्रित करके पौधे को उपलब्ध करवा देता है। तो पौधों को ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की देने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसान बंधु सॉइल टेस्ट अपना जरूर करवाए, सॉइल टेस्ट की
0: मृदा
1: जो
0: परीक्षण
1: मृदा
0: जो है।
1: परीक्षण जरूर करवाए, और उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार ही वो अगर उर्वरक डाले तो और ज्यादा बेहतर
0: बेहतर
1: रहता
0: रहेगा।
1: है। पर यदि उसके पास मृदा परीक्षण की रिपोर्ट नहीं है तो वो हमारे जो उर्वरक की जो रिकमेंडेड जो डोज है उसको वो डाल सकता है।
0: जी तो डॉक्टर साहब, सिंचाई की बात कर रहे थे हम। सिंचाई जो है और निराई गुड़ाई और जिसमें डंडे लगाने की प्रक्रिया, क्योंकि कुछ में तो जरूरत पड़ती है स्टेकिंग, जिसको आपकी भाषा में कहा जाता है,
1: जी
0: तो ये तो जरूरत पड़ती है, इनमें इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे।
1: जी सिंचाई तो अगर आपको लगता है कि बहुत सूखा पड़ रहा है तो उस समय सिंचाई देना जरूरी है। पूरी फसल के दौरान जो है 1 से 2 बार सिंचाई देने की जरूरत पड़ जाती है। किसान बंधु इस बात का जरूर ध्यान रखे कि फसल की जो कोमल स्थितियां है उस पर वो खासकर ध्यान दे, जैसे कि जब बीज का अंकुरित होना है उस समय जमीन पर नमी चाहिए, दूसरा जब उसमें फूल खिलने हैं उस समय जमीन पर नमी चाहिए, तीसरा जब आपका फली जो है विकसित होनी है उस समय जमीन पर नमी चाहिए।
0: यानी कि कम से कम 3 बार जो है इसमें चाहिए चाहिए।
1: हाँ जी, कोमल स्थितियों को ध्यान में रखते हुए।
0: जी तो इसके अलावा जो है इसमें निराई गुड़ाई जो है उसके लिए कुछ खरपतवार नाशक भी हैं, और साथ में उनके बारे में बताना चाहेंगे।
1: जी, जो अगर रासायनिक आपने रासायनिक विधि से जो है खरपतवार की रोकथाम करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो रसायन है वो है एलाक्लोर, एक पेंडीमेथिलीन आता है नाम से दवा आती है, और एक तीसरी है फ्लूक्लोरोलीन।
0: जी तो इनकी मात्रा क्या क्या रहती है और कब इस्तेमाल करनी चाहिए?
1: जो आपकी पेंडीमेथिलीन है उसकी 1.5 किलोग्राम और जो फ्लूक्लोरोलीन है उसकी 1 लीटर 750 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं बिजाई के 2 दिन के भीतर।
0: तो ऐसे में जो है हमने जो है अगर उसमें जो है स्टेकिंग करनी है, डंडे लगाने, क्योंकि सहारे की जरूरत पड़ती है, ये तो जमीन में जाएगी नहीं,
1: जी,
0: तो ऐसे में जो है क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है?
1: उसके लिए तो आपको जो है जब आपकी जो फसल है वो बढ़ रही है उसमें विकास हो रहा है उस समय फूल खिलने से पहले आपको जो है लोकली जो डंडे मिल जाते हैं वो ले ले,
0: स्थानीय तौर पर
1: स्थानीय तौर पे जो लोकली अवेलेबल है वो पौधे के चारों ओर वो डंडों से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बेल है पौधे की वो डंडों पर खड़ी रहेगी और जो फली है उसको भी पूरी तरीके से धूप मिल पाएगी और अच्छे से फली विकसित हो पाएगी।
0: जी
1: पर ये सभी पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। जो बोनी किस्में हैं उसमें डंडों की जरूरत नहीं रहती, जो लंबी फैलाव वाली किस्में हैं उसी में ही हमें डंडे लगाने की जरूरत पड़ती
0: जी
1: है।
0: तो इसके अलावा जो है जब हमने जितना कुछ कर लिया तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है इसमें कुछ,
1: हाँ जी,
0: सर्दियों में वैसे
1: जो
0: कम होता है।
1: जी, ज्यादातर जो बीमारियां देखी गई है फील्ड पे वो है आपकी चूर्ण लसीता रोग
0: जी
1: जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। इसमें जो है पौधों पर हल्के रंग के सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं हर भाग पे। तो जैसे ही आपको रोग का प्रकोप दिखे तो उस समय किसान को वेटेबल सल्फर नामक एक दवा है, हेक्साकोनेजोल और कंटाफ और एक टेब्यूकोनेजोल नाम से दवा आती है, इसका वो प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी तो ऐसे में जो है अगर हमने जो है अच्छी तरह से खेती बाड़ी की, एक औसतन तौर पर जो है कितनी पैदावार प्रति बीघा मिल सकती है हमें?
1: 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और
0: जी
1: 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा हरे
0: उपलब्ध है।
1: मटर जो है किसान को प्राप्त हो सकते हैं।
0: जी तो अगर बीज के लिए अगर किसी ने लगाने हैं तो बीज के लिए कुछ अलग प्रक्रिया रहती है?
1: बीज के लिए ऐसा है कि हमें जो है फसल तो उसी तरीके से लगानी है, बस इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि 2 किस्में जो है वो साथ में ना लगी हो, और अगर एक खेत में दूसरी किस्म है दूसरे खेत में भी दूसरी किस्म है तो उसकी लगभग दूरी जो है 25 मीटर की हो, ठीक है। बाकी जो उगाने की विधि है और बाकी जो तरीके है वो सारे एक जैसे ही रहते हैं। बाकी हरा मटर से थोड़ा आगे आपको फसल को
0: थोड़ा
1: पूरी
0: सा अवधि
1: पूरी
0: जो है इसकी ज्यादा होगी।
1: ज्यादा हो जाएगी, पूरी तरीके से आपको फसल को पकाना है, और एक किस्म दूसरी किस्म से ना मिले किसी भी समय, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है।
0: जी तो ऐसे में जो है बीज उत्पादन के लिए अगर फसल लगाइए, कितने से कितनी प्रति बीघा इसकी पैदावार मिल सकती है?
1: इसकी जो पैदावार है वो हमें जो है 80 से 120 किलो जो,
0: प्रति बीघा जो है
1: हाँ जी
0: मिल सकती है?
1: जी, और अगर
0: जी
1: हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्विंटल बीज जो है हमें प्रति हेक्टेयर मिल जाता है।
0: जी तो डॉक्टर राजेश, आपने हमारे सुनने वाले किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी कि मटर की उन्नत और वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी कैसे की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों, उन तो सुना सुनिए पेंट वार्ता फसल मटर।

0: सिर्फ दी फसल पर कने दिखी लिया जी हूँ नवंबर आने वाला है कने नवंबर दे माह विच मटर दी फसल जड़ी है सहां लाना शुरू करी देंदे तो थोड़ी दी जानकारी तो हमें दे दित्ती है कि किए किए तुसां मटर दा बीज लेना है कैस किस तरह दा होना चाहिए कने किए तो हाँ ते दी बिजाई रुपाई करनी है किस तरह दे तो हाँ तिस च जड़े पोषक तत्व ने सह पाने है ना कने इस जानकारी दे बाद तुसाई सुनाना है विज्ञापन कने विज्ञापन दे बाद एक प्यारा दिया लोक गीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
2: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
3: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
2: जी डॉक्टर साहब,
3: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
4: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्रांदियां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य 3 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य

0: हिस्सा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जयकुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम में 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड सर्विस शुड बी द मेन पर्पस ऑफ लाइफ एंड मस्ट बी इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स टू सर्विस शुड रिमेन द गाइडिंग प्रिंसिपल इवन व्हेन वन रीचेस द हाईएस्ट पोजीशन। मिस्टर मोदी मेड रीज रिमार्क्स ड्यूरिंग अ वर्चुअल इंटरेक्शन विद सेवा यात्रीज ट्रैवलिंग ऑन द यात्रा फ्रॉम वडनगर टू वाराणसी।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only when there is a spirit of service 4 crore poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani has stressed the need for country's defence acquisition system to adapt swiftly to keep pace with the changing character of warfare. Addressing an event organised by a media house in New Delhi today, General Subramani highlighted the importance of the integration of technology, data and industry in strengthening the defence ecosystem. He stressed upon the need to have the means to sustain, replenish and repair weapons in the battlefield. Indian Railways has approved the introduction of a new daily train service between Kanpur Central Railway Station in Uttar Pradesh and Anand Vihar Terminal in Delhi, providing an overnight rail connectivity option between the two cities. Railways has also approved the construction of a 4-lane road overbridge at Alkapuri in Vadodara Division of Western Railway. The Ministry of Railways said the cost of the project is over 166 crore rupees and will be shared equally between railways and the state government. The Ministry said the road overbridge will provide an improved and more effective crossing facility without disturbing railway operations. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The deep depression over the Bay of Bengal crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering extremely heavy rainfall in several

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल
5: एक किसान वाणी श्रोताओं को हमारा
6: नमस्कार।
5: किसान श्रोताओं, किसान वाणी के आज के संक को लेकर मैं हूँ रविंदर विशिष्ट।
6: और मैं हूँ शिवरंजन। किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को संध्या 7:10 से 7:45 तक प्रसारित किया जाएगा। इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से रिले किया जाएगा।
5: जी तो शिवरंजन, क्या कुछ आप लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में हमारे किसान बागवान श्रोताओं के लिए?
6: किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में हम काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर आपको जानकारी देंगे वो है जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षा आप किस तरह से कर सकते हैं। करवाएंगे मनोरंजन आपका लोकगीत से भी और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का प्रसारण भी। विषय रहेगा औषधीय गुणों वाली काली हल्दी का उत्पादन एवं प्रबंधन। बातचीत में भाग लेंगी सुभद्रा कंवर और उनसे जानकारी हासिल करेंगे रविंद्र वशिष्ठ। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी।
5: जी तो किसान बागवान श्रोताओं, बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है। किसान बागवान श्रोताओं, जैविक खेती विधा और उसके उद्देश्यों के पीछे निहित प्रेरणा की जानकारी तभी हो सकती है जब इसके अंतकरण में स्थित मूलभूत सिद्धांतों को समझा जाए। स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता के खाद्य, रेशे और अन्य उपज की लगातार प्राप्ति और पर्यावरण और मिट्टी उर्वरता का दीर्घकालीन स्थायित्व इस विधा के प्रमुख अंग हैं। समय के साथ जैविक खेती सिद्धांतों में अनेक बदलाव हुए हैं जो जैविक आंदोलन की दिशा तय करते हैं। आज के सिद्धांत खेती के लगभग हर उन सभी पहलुओं पर लागू होते हैं जिनके अंतर्गत धरती को जोता जाता है, जल प्रबंधन किया जाता है, पौधों व पशुओं का पोषण किया जाता है और खाद्यान्न का उत्पादन और वितरण भी किया जाता है। इनमें मानव, धरती के सभी जीव स्वरूप और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए आगामी पीढ़ियों के लिए आपसी संबंधों और प्रकृति प्रदत्त स्रोतों के उपयुक्त दोहन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज के जैविक खेती सिद्धांत पूरे जैविक आंदोलन को उनकी पूरी विविधता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
6: जी किसान भाइयों, जैविक खेती मिट्टी, पौधों, पशुओं, मानव और धरती के स्वास्थ्य को टिकाऊ व अक्षुण्ण रखते हुए सबको एक अविभाज्य इकाई के रूप में मान्यता देती है। मानव समुदाय के उत्कृष्ट स्वास्थ्य की परिकल्पना बिना स्वास्थ्य वातावरण के नहीं हो सकती है। स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ फसलों को जन्म देती है और स्वस्थ फसलों से पशुओं व मानव का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। सभी जीव स्वरूपों के बीच संपूर्ण समन्वय ही संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है। किसान भाइयों, प्रत्येक जीव स्वरूप का पालन पोषण, उत्पादन, अच्छे फसल उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अच्छे फसल उत्पादन के लिए जीवंत मिट्टी, अच्छे पशुओं के लिए स्थानीय वातावरण, मछली और जलीय जीवों के लिए स्वस्थ जलीय पर्यावरण और मानव के लिए संपूर्ण स्वस्थ वातावरण व उसके सभी अंगों के बीच समन्वय अति आवश्यक है। जैविक खेत, चारागाह और जंगल क्षेत्र भी इस चक्र से जुड़कर प्रकृति के संतुलन में सहायक हो सकते हैं।
5: जी किसान बागवान श्रोताओं, जैविक खेती एक टिकाऊ उत्पादन प्रक्रिया है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं और संसाधनों पर आधारित है। जैविक खेती के कुछ मुख्य बिंदुओं की बात यदि करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग, सूर्य प्रकाश और विभिन्न जैव रूपों की जैविक क्षमता का प्रभावी उपयोग, इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण और जैव अंश और पौध पोषणों का पुनः चक्रीय रूप में प्रयोग। इसके साथ साथ प्रकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आदान जैसे रसायन तथा परिवर्तित जैव स्वरूपों का उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका उत्तरोत्तर विकास और सभी जीवों और पशुओं के साथ आदर व समता का भाव।
6: किसान भाइयों, जैविक खेती टिकाऊ और उत्पादन क्षम होने के साथ साथ छोटे किसानों के लिए बहुत लाभकारी भी है। अनेक परीक्षणों से यह सिद्ध भी हो चुका है कि भारत जैसे छोटे खेतिहर किसानों के लिए जैविक खेती सबसे उत्तम व लाभकारी प्रक्रिया है। जैविक खेती खाद्यान्न सुरक्षा के साथ कुछ विशेषताओं सहित गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है। कम उत्पादन और निम्न आदान प्रयोग क्षेत्र में अधिक उत्पादन सुनिश्चित ये करती है। साथ ही जैविक खेती खेतों व उनके आसपास जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करती है। इसके अलावा उत्पादन लागत में कमी कर ये लाभ भी बढ़ाती है और साथ ही साथ किसान भाइयों, जैविक खेती अनेक

0: से स्वस्थ और सक्रिय भूमि फसल पोषण का स्रोत है और खेत की जैव विविधता द्वारा नाशजीव नियंत्रण होता है। फसल चक्र और बहुफसलीय कृषि प्रणाली मिट्टी स्वास्थ्य के स्रोतों को बनाए रखते हैं। बात यदि की जाए मुख्य बिंदुओं की, तो सबसे पहले मृदा की समृद्धशीलता, तापक्रम प्रबंधन, वर्षा जल का संधारण, सूर्य ऊर्जा का अधिकतम उपयोग और आदानों में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक चक्र और जीव स्वरूपों की सुरक्षा और इसके अलावा पशुओं का समन्वय तथा पशु शक्ति व स्थानीय स्रोतों पर आधिकारिक निर्भरता।
1: जी किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि आप मिट्टी की समृद्धशीलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक आदानों के प्रयोग को नकारते हुए अधिकाधिक फसल अवशेष का उपयोग, जैविक और जैव खाद का प्रयोग, फसल चक्र और बहुफसलीय प्रणाली का अपनाया जाना, अधिक व गहरी जुताई का त्याग और मिट्टी को सदा जैविक पदार्थों या पौध अवशेषों से ढककर रखना, इस तरह से आप जो है मिट्टी समृद्धशीलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम बात करें तापक्रम प्रबंधन की, तो मिट्टी को ढककर इसमें रखना चाहिए और खेत की मेड़ों पर वृक्ष और झाड़ियां भी लगानी चाहिए, तभी आप जो है तापक्रम प्रबंधन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करें अगर हम मिट्टी जल को सुरक्षित रखने की, तो जल संधारण, गड्ढे खोदना, मेड़ की सीमा रेखा का रख रखाव समय समय पर करते रहना, ढलवा भूमि पर कंटूर खेती करना, खेत में तालाब बनाना और मेड़ों पर कम ऊंचाई वाले वृक्षारोपण करने से आप मिट्टी जल को सुरक्षित भी कर सकते हैं।
0: इसके अलावा किसान बागवान श्रोता, सूर्य ऊर्जा का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं? विभिन्न फसलों के संयोजन और पौधरोपण कार्यक्रम के माध्यम से पूरे वर्ष हरियाली बनाए रख सकते हैं और आदानों में आत्मनिर्भरता, अपने बीज का स्वयं विकास करें, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, तरल खाद और पौधों के सत या अर्क का फार्म परा उत्पादन भी कर सकते हैं।
1: जी किसान भाइयों, अब बात करते हैं जैविक खेती के उद्देश्यों के बारे में भी। किसान भाइयों, इस खेती की शुरुआत एशिया महाद्वीप से हुई है, जिसमें भारत एवं चीन प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर किसान खेती में वेद शास्त्रों को प्रमुख

0: काफी सस्ते और प्रभावशाली होते हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर ऐसा पाया गया है कि अगर किसान भाई अपनी फसलों में समुचित जीवाणु खादों का प्रयोग करें तो विभिन्न फसलों की उपज में 10 से 30% तक की वृद्धि होती है, जिससे उनको विभिन्न फसलों में अधिक आय प्राप्त हो सकती है।
1: जी, तो किसान भाइयों, ये तो हमने बात करी जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षा आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, अब तो कार्यक्रम में जानकारी के बाद समय हो चला है मनोरंजन करवाने का। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं लेखराम पाल की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान बागवान श्रोता हो, अभी आपने सुना लेखराम पाल की आवाज में ये डोक गीत।
1: किसान भाइयों, मनोरंजन के बाद कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत सुनवाने का। तो किसान भाइयों, आज जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा औषधीय गुणों वाली काली हल्दी का उत्पादन एवं प्रबंधन। और इस बातचीत में भाग ले रही हैं सुभद्रा कंवर और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं रविन्द्र वशिष्ठ। आइए सुनते हैं।
0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बागवान श्रोताओं को हमारा
2: नमस्कार।
0: किसान बागवान श्रोताओं, हाजिर हैं हम आपका जानकारी भरा कार्यक्रम लेकर, जिसमें आज के संक में हम बात करेंगे औषधीय गुणों वाली काली हल्दी का उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसी संदर्भ में आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सुभद्रा कंवर, जो कि इस विषय पर अधिक जानकारी हमें प्रदान करेंगी। सुभद्रा जी, स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
2: नमस्कार जी।
0: जी तो सुभद्रा जी, सबसे पहले आप से जानना चाहेंगे कि काली हल्दी के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु किस प्रकार की रहती है। यदि किसान बागवान साथी इस हल्दी का उत्पादन करना चाहते हों तो कौन कौन से क्षेत्रों में इसका उत्पादन कर सकते हैं?
2: काली हल्दी के लिए तापमान 15 से 45 डिग्री तक कहीं भी हो सकती है, और इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और जब हम अपने मतलब मिट्टी को बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमारे को अपने खेत का हल चला के 2 या 3 बार हमारे को इसको हल चलाना है।
0: यानी कि 2 या 3 जुताई किसान बागवान साथियों को करनी पड़ेंगे, उसके बाद ही आप जो काली हल्दी के उसको क्यारियों में आप बो सकते हैं। जी।
2: और जब हम 2-3 हल चला के इसको क्यारिये बना देंगे तो उसके बाद हमारे को इसमें खाद, मैं नेचुरल फार्मिंग करती हूँ, प्राकृतिक खेती करती हूँ, जिसमें हम घन जीवामृत बनाते हैं, या आप जो हमारे पशुओं के गोबर होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। और घन जीवामृत पहले बोते डालना है और उसके बाद हमारे को कैरी बनानी है और फिर हमारे को इसका बीज लगाना है। ट्रीटमेंट करने की भी इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही एक औषधि होती है। और उसके बाद हमारे को इसको लगाना है और उसके बाद आच्छादन करना है इसके ऊपर।
0: यानी कि काली हल्दी जो है इसका बीजोपचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें अपने आप ही औषधीय गुण मौजूद रहते हैं।
2: हाँ जी।
0: जी सुभद्रा जी, अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि औषधीय गुण वाली काली हल्दी के औषधीय गुण क्या क्या हैं? हमारे किसान बागवान साथ जो इसका उत्पादन करना चाहते हों तो कौन कौन से इसके औषधीय गुण हैं हमारे किसान बागवान साथियों के लिए, कृपया हमें बताएं।
2: इसके औषधीय गुण ये बहुत से बीमारियों के लिए काम आती है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कर्क्यूमिन होता है, क्योंकि ये अगर हम इसको नेचुरल तरीके से ही लगाए तो इसकी गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इसको लगाने के बाद इसमें पानी की मतलब ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, अगर ज्यादा पानी इसमें डाले काली हल्दी में तो ये मतलब कम इसकी उपजाऊ शक्ति इसमें कम होती। और अगर मॉइस्चर अपने आप देख के मतलब इसमें पानी डालने की जरूरत होती है। और इसमें अगर हम इसके औषधीय गुण बताएं तो मैं साबुन भी बनाती हूँ और शैम्पू उसमें भी डालती हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत सी बीमारियों के लिए होता है।
0: विशेषकर किन किन रोगों के लिए काली हल्दी का इस्तेमाल हमारे किसान बागवान साथी कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि काली हल्दी का इस्तेमाल अपने जितने के सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद हैं, साबुन है या तेल है, उनमें भी आप करती हैं, तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां भी हैं, अन्य बीमारियां जिनमें किसान बागवान साथी इस औषधीय गुणों युक्त काली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं?
2: एक कैंसर के लिए तो एक बहुत ही एक कारगर औषधि है, और ना बहुत से लोगों को ये हल्दी दी है और बहुत लोग ठीक भी हुए इससे। और स्किन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी होता है, मतलब ये बहुत सी बीमारियों के लिए होती है, मगर इसका खाने का तरीका बहुत कम खाने पड़ती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है।
0: जी, यदि बात की जाए सुभद्रा जी प्रति हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों के लिए ये काली हल्दी का उत्पादन उपयुक्त है, कौन कौन से जिलों में इसका उत्पादन किया जा सकता है?
2: तो मैं बोल रही हूँ कि ये तो 0 मतलब 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है, मगर इसके लिए मिट्टी थोड़ी दोमट मिट्टी हो तो ये हर जगह हो सकती है, गर्म इलाके में हो सकती है और ठंडे इलाके में हो सकती है। बस इसका थोड़ा लगाने का तरीका अगर हम मार्च या अप्रैल में लगा देते हैं ना, तो ये सिर्फ 9 महीने की फसल है। अगर हम एक साल और इसको रख देते तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मतलब वैल्यू, औषधीय प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है।
0: जी, इस औषधीय गुणों वाली काली हल्दी के उत्पादन का समय क्या रहता है, कौन कौन से महीनों में हम इसे लगा सकते हैं, और विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों के लिए आप क्या सलाह देती हैं?
2: अगर जहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम हो तो वहाँ पर आप आच्छादन कर सकते हैं, और जून में इसका लगाने का, लास्ट जून तक लगा सकते हैं, और आगे फिर मौसम बरसात पड़ जाती है, बरसात के बाद ठीक ढंग का हम आच्छादन कर दे इसके ऊपर, तो इसको पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। और ऐसे भी इस हल्दी के लिए ना पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा पानी में कम होती है।
0: जी, आपने कहा कि इसके लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती, कम नमी में भी ये अच्छी फसल किसान बागवान साथी ले सकते हैं, तो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि खाद और उर्वरक कौन कौन से हमारे किसान बागवान साथी औषधीय गुण वाली काली हल्दी के उत्पादन के लिए कर सकते हैं?
2: इसके लिए रासायनिक खाद तो इसमें बिल्कुल ऐसे भी डालते हैं, और जो हम आच्छादन और हमारे जो जीवामृत, घन जीवामृत हम बनाते हैं, तो उसी को हम डालते हैं इसमें, और या हमारे जो पशुओं का गोबर होता है उसको डालते हम, और इसको ज्यादा उर्वरक की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और बस दो बार इसकी निराई गुड़ाई कर दो आप, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे देती है।
0: जी सुभद्रा जी, औषधीय गुणों वाली काली हल्दी के उत्पादन के लिए निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण की क्या व्यवस्था रहती है?
2: बस इसको अगर दो बार आप निराई गुड़ाई कर दे इसकी, और इसमें जो खरपतवार है इसी के ऊपर डाल दे, और बस ज्यादा इसकी जरूरत मतलब काम बहुत ज्यादा काम नहीं होता इसमें, जैसे जो अदरक का काम होता है वैसे ही इसका काम होता है। इसमें जो है उत्पादन थोड़ा कम होता है, जो दूसरी हमारी आम हल्दी होती है उससे कम इसमें प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये थोड़ी महंगी है और गुणों से भरपूर है।
0: जी सुभद्रा जी, यदि हमारा कोई किसान

0: रुपए मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो एक बीघे में अगर हम दूसरी फसल लगाते हैं ना, तो उससे हमारे को इतना आमदनी नहीं हो सकती जितनी जी हमारे को काली हल्दी से आमदनी हो सकती।
1: जी, तो काली हल्दी को खेत से निकालने के बाद इसके विपणन की क्या व्यवस्था रहती है, या इसका भंडारण हमारे किसान बागवान सर किस प्रकार कर सकते हैं, और यदि इस फसल को बेचना चाहें तो कहां पे इसका विपणन हमारे किसान बागवान साथी कर सकते हैं?
0: ये सर एक नई नई फसल है अभी तो, इसका विपणन मैं तो अपनी बात करूं, मैं तो किसानों को देती हूं। मैंने मध्य प्रदेश से बीज लाया था और अपने लगाया, और अभी तो मेरे इतना प्रोडक्शन हुआ नहीं कि मतलब मैं बाहर भेजूं, मगर जितने भी किसान हैं उनको मैं किसानों को देती हूं। और इसका मैं तो ये बोलती हूं अगर ज्यादा से ज्यादा खेती करें, नई खेती है बिल्कुल, और अब सभी लोगों को पता चला कि 1 एकड़ लगाना बहुत जरूरी है। और विपणन तो बाहर के देशों में मैं देख रही थी, ये कहीं भी इसको बेच सकते हैं, अभी हमारे हिमाचल में भी नहीं है इसका पूर्ति मतलब।
1: काली हल्दी की प्रति किलो के हिसाब से लगभग क्या रेट बैठता है, यानी कि कोई किसान यदि बेचना चाहे तो प्रति किलो किस हिसाब से बेच सकता है?
0: तो अब मैंने तो 600 रुपए किलो बीज लाया था, और अगर कोई किसान तो अब 800 रुपए भी दे रहे, कई 1000 भी दे रहे। वैसे इसकी मार्केट बढ़नी है मतलब, क्योंकि बीमारी आपको पता है कितनी बीमारी लग गई है, और ये बीमारियों का एक इसलिए तो इसको काला सोना कहते हैं हल्दी को ना, एक मतलब काली हल्दी को काला सोना कहते हैं। ये बहुत सी बीमारियों को काम आती है, कैंसर तक के लोग इससे ठीक हुए हैं और होते भी है। अभी तो हमने किसानों को ही बांटी हुई है, किसको 5 किलो, किसको 4 किलो, किसको 10 किलो, मतलब तो बहुत अच्छी इसका काम है। और अगर कोई करना चाहे
1: आपने काली हल्दी का उत्पादन लगभग कितने से शुरू किया था, यानी कि कितनी किलो हल्दी आपने सबसे पहले लगाई थी और उस हल्दी से आपको कितना लाभ हुआ था?
0: मैंने महाराष्ट्र से मंगवाई थी, मैंने 10 किलो हल्दी मंगवाई थी पहले, तो उस हल्दी से मेरे से आज मैंने मतलब किसानों को भी देती रही, 4 गुना हल्दी हो गई थी। बस कुछ अपने को बीज रखती हूँ मैं, और जो एक्स्ट्रा होती है बेच देती हूँ, पाउडर बना के भी बेचती हूँ, और मैं जो अपने शैम्पू साबुन वगैरह तेल बनाती हूँ तो उसमें भी मैं डालती हूँ, और कई बीमार उनको भी मतलब पाउडर बना के भेजती हूँ मैं बाहर तक।
1: जी, कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि यदि कोई युवा किसान बागवान साथी इस औषधीय गुणों वाली काली हल्दी का उत्पादन करना चाहते हों तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं?
0: मैं तो ये बोलती हूँ कि किसानों के लिए और युवाओं के लिए ये एक बहुत अच्छी खेती है, और इसको ना तो सुअर खाते हैं, ना कोई कुछ जंगली जानवर खाते हैं, कोई और चीज में नहीं खाती इसको, और हमारा ना मतलब और फसलें भी बच जाती है अगर इसको हम साइड में लगाए तो, और फसलें भी बच जाती है, तो इसका काम करना चाहिए और बहुत फायदे के खेती है।
1: जी सुभद्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे किसान बागवान श्रोताओं को दी। तो किसान बागवान श्रोताओं, आज आपने जाना कि किस प्रकार औषधीय गुण वाली काली हल्दी का उत्पादन और प्रबंधन आप कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमाते हुए अपनी आर्थिकी को भी सुदृढ़ कर सकते हैं, और विभिन्न रोगों से उपचार के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सुभद्रा जी, एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका स्वागत और धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये जानकारीपूर्ण बातचीत, विषय था औषधीय गुणों वाली काली हल्दी का उत्पादन एवं प्रबंधन। बातचीत में भाग ले रही थी सुभद्रा कंवर और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे रविंद्र वशिष्ठ।
1: जी शिवरंजन, अब जानकारी के बाद क्यों ना सुनवा लें अपने किसान बागवान श्रोता को एक और लोकगीत।
2: जी
1: तो आइए किसान बागवान श्रोताओं, हम और आप सभी सुनते हैं युवा शर्मा और

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने लोकगीत। किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में चलते चलते बात कर लेते हैं कल के आकर्षणों के बारे में भी। किसान भाइयों, कल काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है वर्ष भर आप पुष्प उत्पादन कैसे कर सकते हैं। साथ ही करवाएंगे मनोरंजन आपका लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी।
1: जी किसान बागवान श्रोताओं, अब समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम को यहीं समेटने का। अगले अंक में नए विषय पर ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन सकते हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, एचपीएमआईएस पोर्टल से सेब खरीद में आई पारदर्शिता, अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला स्वच्छ पेयजल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का किया आह्वान। स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय ने प्रदान किए 3.5 करोड़ रुपए। और प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने अगस्त माह का वेतन अभी तक न मिलने के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद की गई है और 17000 से अधिक बागवान एचपीएमआईएस पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचपीएमआईएस पोर्टल से सेब की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा और राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि एमआईएस के माध्यम से खरीदे गए सेब के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी मदद मिलेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष 1 अगस्त से 213 सेब संग्रहण केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया जारी है और ये केंद्र एचपीएमसी व हिमफेड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। सेब खरीद प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के माध्यम से देश सेवा के मंत्र और समर्पण के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरा कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन के बारे में। इस योजना का हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा पहाड़ी राज्य बन गया है, जहां आज लगभग हर घर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गांव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गांव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
5: मेरा नाम ममता है, मैं शिमला की रहने वाली हूँ। हमारी ग्राम पंचायत बढ़ई, हमारे गाँव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गाँव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारे हमारी जितनी भी महिला और बहने हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है, क्योंकि बहुत दूर से हमें पानी लाने पड़ता था। अब जब नलके लगे हैं तो हमें बहुत राहत मिली है और हमें शुद्ध पानी भी आता है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें घर घर नल दिया।
4: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
6: नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश जिला चंबा का रहने वाला हूं। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। मैंने भी इस योजना का बहुत लाभ उठाया है और जो मेरे गाँव वासी उन्होंने भी हर घर में जो है वो नल लगा है। और एक बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया होता है। जब भी बारिश होती है और जो उसका पानी होता है उस टैंक के माध्यम से जो स्टोर हो जाता है और जब भी हमें कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जल जीवन मिशन ये योजना चलाई है।
4: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इटली के मिलान शहर के अध्ययन प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थलों, शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर देश व प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका तुलनात्मक अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। कुलदीप सिंह पठानिया ने भारतीय मूल के लोगों से भारत में निवेश करने का आह्वान किया ताकि देश की आर्थिकी मजबूत हो सके। शिमला मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर घंडल के समीप आज एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस और कार की टक्कर में कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोलन जिला के अर्की तहसील के फांजी गांव के दयानंद, उनकी पत्नी हेमलता और माता विद्या देवी के रूप में हुई है, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार बस में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है और पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
7: यार, 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
8: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
9: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
8: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
9: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2029 तक नशा मुक्त भारत का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रत्येक देशवासी को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब और गढ़ शंकर में आयोजित नशा विरोधी यात्राओं में शामिल होने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई की तैयारी है और इसे जन आंदोलन का रूप देकर ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने सभी से प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प से जुड़कर नशे के खिलाफ लड़ाई में सहयोग का आह्वान किया। इस बीच जयराम ठाकुर ने 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3,744 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंचायती राज मंत्रालय का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। रक्षा मंत्रालय ने हमीरपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड्डू के छात्र सर्वेश शर्मा को भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रुद्रा HT-1 स्पेक्ट्रा ड्रोन विकसित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सर्वेश शर्मा को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उनका ये नवाचार प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा द्वारा तैयार ड्रोन सीमा पर निगरानी में मददगार साबित होगा। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और युवा अब अपने सपनों को आत्मविश्वास के साथ साकार कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा सर्वेश शर्मा की इस उपलब्धि से प्रेरणा लेकर नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अगस्त माह का वेतन सितंबर की 24 तारीख तक भी ना मिलने के विरोध में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि निगम के 1000 नियमित, 70 डेलीवेज और 500 आउटसोर्स कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने इसके लिए निगम प्रबंधन और पर्यटन निगम के अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी करने की मांग की है।
10: हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म का कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। केवल मात्र 1500 कर्मचारी, जिसमें से 1000 रेगुलर और 500 आउटसोर्स पे लगे कर्मचारी, जिनको आज 24 तारीख हो गई है, तो एक महीना 24 दिन बीत जाने के बाद भी उनको आज उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं पड़ी है। टूरिज्म बचाओ बाली बघाओ। अगर प्रदेश के टूरिज्म को बचाना है तो ऐसे चेयरमैन को तत्काल प्रभाव से हटाना होगा।
3: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने किसानों, बागवानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए अनेक सराहनीय योजनाएं आरंभ की है। हमीरपुर में आज कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिला के 182 किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर करीब 26 लाख रुपए की सब्सिडी राशि जारी की गई है। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज, अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज और अत्याधुनिक मशीनें व रोबोटिक सर्जरी सहित कई बड़ी आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए वे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और उनकी जरूरतों व मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत भी करवा रहे हैं। इस दौरान सुनील शर्मा बिट्टू ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि भी हस्तांतरित की। सिरमौर जिला के दूरदराज इलाकों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को अब डिजिटल एजुकेशन और कंप्यूटर तकनीक की जानकारी मोबाइल कंप्यूटर वैन के जरिए मिलेगी। विधायक अजय सोलंकी ने नाहन में मोबाइल कंप्यूटर वैन को हरी झंडी दिखाने के अवसर पर कहा कि इसके माध्यम से पहली से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन सहित AI के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में क्षेत्र के दूरदराज व ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में ये पहल की गई है।
11: कंप्यूटर एजुकेशन आने वाले समय में अनिवार्य हो गया है, उसी के मद्देनजर आज एक मोबाइल वैन को फ्लैग ऑफ किया है, जिससे ये सभी स्कूलों में जाकर छोटे बच्चों को भी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देंगे। इसमें AI का टूल भी इन्होंने इंस्टॉल किया है, तो आजकल AI का भी जमाना है। आने वाले समय में सभी लोग स्किल्ड हों और कंप्यूटर एजुकेशन सभी तक पहुँचे।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा HPMIS पोर्टल से सेब खरीद में आई पारदर्शिता, अब तक 8000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 17 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिला स्वच्छ पेयजल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग का किया आह्वान। स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्र सर्वेश शर्मा को रक्षा मंत्रालय ने प्रदान किए 3.5 करोड़ रुपए। और प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने अगस्त माह का वेतन अभी तक ना मिलने के विरोध में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
12: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
13: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
12: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
13: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
12: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
14: आ
13: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
9: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
13: नियम और शर्तें लागू।
14: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
13: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
9: नियम और शर्तें लागू। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में गाए इस गजल के साथ।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए सतेंद्र सरताज की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत।

अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा

0: शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी

0: घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
2: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 96 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
6: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई, पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
7: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
8: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
7: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 7 और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognised for their last mile delivery.
10: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे अभी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
9: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
10: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
9: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
10: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
9: During the interaction, Seva Yatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
11: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
12: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर। अवसर दे रही है।
11: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर।
13: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य है।
14: The ambitious goal of विकसित भारत is to achieve our objectives on time and with quality. Most importantly, our public servants must ensure the delivery of quality services to citizens. This applies not only to the government of India, but also to every state and every level of administration. From grassroots workers to senior secretaries and policy makers, capacity building is needed across the entire administrative hierarchy. With this vision, Mission Karmayogi was established 5 years ago.
11: All central government employees and officers of the All India Services are required to complete prescribed courses on IGOT annually, which get captured in their annual performance appraisal reports. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
9: This is Akashwani giving you the news.
15: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
9: Welcome back to Evening News on Akashwani. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. Secretary West C.B. George participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Mr. George emphasized India's human-centric and inclusive path of development anchored in the principles of Sarvodaya. Citing India's development partnership initiatives, Secretary West emphasized India's position that development is not merely the provision of financing, but about building domestic capabilities and strengthening resilience. Heavy to very heavy rain continues in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. A report.
16: The deep depression has affected six districts, Koraput, Gajapati, Malkangiri, Ganjam, Navarangpur and Raigada, with 273 villages reporting impacts. The state government has said 8,082 people have been shifted to safer locations. Malkangiri has reported water flowing over roads and bridges. In Ganjam, a large rock fell on NH-16 at Badaghati, affecting traffic between Bhubaneswar and Barhampur. The government has activated round-the-clock control rooms, deployed Odisha Disaster Rapid Action Force, NDRF and fire services teams and arranged relief supplies. Schools and Anganwadi centers in Gajapati, Navarangpur and Kalahandi will remain closed tomorrow as a precaution. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
9: The India Meteorological Department or IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Vidarbh tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, Kerala, Mahi and Telangana tomorrow. On to sports. In the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400m relay race at Nagoya today. The quartet of Povamma Raju, Vishal Tenarasu, Vithya Ramiraj and Manu T.S. timed the run at 3 minutes 14.46 seconds to defend India's silver medal won in the last edition of the Games in Hangzhou. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000m race after finishing a third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. Earlier in shooting, Anantjeet Singh Naruka and Parinaz Dhaliwal also bagged bronze in the mixed skeet team event, the first ever medal for India in this category. In the morning, India
17: Indian Wushu player Roshi Beena Devi Naurem won silver in the women's 60kg Sanda event after losing to China's Zhang Jiao in the final. It was third Asian Games medal for Roshi Beena after silver in 2023 Hangzhou Games and bronze in 2018 Jakarta Palembang Games. In men's double sculls rowing, Satnam Singh and Salman Khan won bronze. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the medal-winning players. Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% lower today, with Sensex dropping over 1,200 points.

कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता चंकी पांडे की फिल्मों के गीत, और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तेजाब का ये गीत,

अभी आप सुन रहे थे एक ही अभिनेता अभिनेत्री के क्रम में अभिनेता चंकी पांडे की फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रंगी गजल।

रंगी गजल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गुलाम अली की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गजल, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से डेली हाइलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026 रिले किया जाएगा।

0: सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: हेलो एंड वेलकम टू अवर स्पेशल डेली एशियन गेम्स रीकैप शो ऑन आकाशवाणी। माय नेम इज अभिनव पुंछी। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द हेडलाइंस। The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Sattam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinaz Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: भारतीय एथलीट्स दिखाने लगे रंग, एक के बाद एक मेडल और अब एथलेटिक्स में गोल्ड का इंतजार। इंडियन एथलेटिक्स का मेडल अकाउंट अब खुल चुका है और ट्रैक एंड फील्ड से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। अब इंतजार है उस सुनहरे पल का जब पोडियम पर गोल्ड के साथ भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर लहराए। शुरुआत करते हैं मिक्स्ड 4x400m रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूर्व महाराजू विशाल थेनारसु, विद्या राम राज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या राम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया। यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रहीं। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100m बाधा दौड़ 14.80s में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74m की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.15m के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200m दौड़ 25.96 में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100m बाधा दौड़ 14.61 में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71m की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44m थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200m दौड़ 26.27 में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी तीन आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
3: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का आठवां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का आठवां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ नवां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jaakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Nanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
4: Wushu icon Rushabana Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Rushabana gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabana Devi has become a three-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
3: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मलिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नवबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई, इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वैंकूवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
4: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chotrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chotrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
2: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया, यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
4: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manu Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल दो में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
4: India's Benedictine Bennison finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4 into 100-meter freestyle relay heats, Benedictine Bennison, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
4: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Niyocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medal tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's semi-finals time for both men's and women's as India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then face Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna Jay Menon are in action in the women's shot put final, while the women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan and Baranika Elangaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer Singh do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then Meet Singh and Praveen Kumar are in action in the men's hammer throw final. Apart from the gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100 meter athletics. India will also be seen in the action in surfing, fencing, badminton, keno, swimming and esports. So here's hoping for a great day from the Indian contingent. So that's all from the special Asian Games report on Akashwani. From producer Shehnawaz Khan, editor Vishal Kumar and me Abhinav Punchi, we bid you farewell and hoping that India have a glorious Friday and do well in the Asian Games. Thank you for listening.
5: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
6: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। इसमें रात्रि के 10:20 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:20 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं हिमाचली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीत आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीत चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में गाए फिल्म हरियाली और रास्ता के इस गीत के साथ।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में गया फिल्म तीसरी मंजिल का ये गीत।

जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में गाया फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में, लीजिए अब सुनिए SH बिहारी का लिखा गीत। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म गौरी का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म वक्त का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वड नगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।

0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 trillion की अर्थव्यवस्था है और $30 trillion की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि ₹2000 से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिभार नहीं है। सूत्रों ने बताया कि MDR का एक भी रुपया सरकार के पास नहीं जाता। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम परीनाश धालीवाल, अनंत जीत सिंह नरुका और सीमा को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with resolve to build a developed India. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and nation interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The Minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontations and the security dilemma. Government sources today emphasized that merchant discount rate MDR on person to merchant UPI transaction above ₹2,000 is not assessed or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigates inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic custom duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic custom duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held a meeting with Prime Minister of Antigua and Barbuda, Gaston Brown, on the sidelines of UNGA in New York. In a social media post, Dr. Jayashankar said the development partnership, capacity building and climate change cooperation are going forward. He also expressed India's strong commitment to the success of Commonwealth Heads of Government meeting. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York on the margins of UNGA today. External Affairs Ministry said in a statement that India's approach combines political commitment with practical support. Mr. George also participated in the second G7 Development Ministers meeting organized by the G7 Chair, France, on the sidelines of UNGA in New York. Earlier, Mr. George participated in a high-level side co-hosted by Ghana, Germany and France, Reparatory Justice. Heavy to very heavy rain continued in several parts of Odisha under the influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4x400 meter relay race at Nagoya today. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000 meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000 meter event at the Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।